0: क्यों मस्ती?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:05 हो चुके हैं। आहा, खिड़की खोलकर एक बार बाहर देखिए, ज़रा मौसम सुहाना है बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रात भर से बारिश हो रही है और अभी भी बहुत जगहों पर बूंदाबांदी चल रही है। और हाँ, आज है फ्राइडे और कल हो जाएगा शुरू वीकेंड, तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मस्ती और आराम का दिन। तो इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ हूँ हाजिर पूनम, राइज एंड शाइन लेकर RM2 रेडियो मस्ती पर। आप तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं शानदार फ्राइडे की मॉर्निंग बनाने के लिए प्यारे प्यारे गानों के साथ आप सबका साथ।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

5:12 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपनी ही राइज एंड शाइन प्रोग्राम के साथ। कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह की अगर पहली किरण में इतनी ताकत है कि अगर आप जल्दी उठते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, तो आपका यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां देता है। तो शायद उनकी दादी नानी दादा दादी की जो दुआएँ हैं, मैं तो कहती हूँ कि सुबह में ही होती हैं,

0: पेरेंट्स को एक्चुअली मोटिवेट करना पड़ता है अपने बच्चों को सुबह उठाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन तो वो पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पर सुबह की जो पढ़ाई है ना उसमें कुछ अलग ही नशा है, मज़ा है। अगर आपने उस सुबह की पढ़ाई को कर लिया, जिसने शुरुआत कर दी मॉर्निंग की पढ़ाई, तो मैं तो कहती हूँ बस आपको फिर पास क्या, आपके तो नंबर ही नंबर वन होंगे। तो चलिए भाई इंजॉय कीजिए गानों को, साथ साथ जो इस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और साथ साथ कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं, उनको हम इतना ही कहेंगे आराम से चलाइए गाड़ी और साथ में पढ़ाई करें और अपने रूम को करो फटाफट से चकाचक क्लीन, नीट एंड क्लीन। जब होता है ना तो पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है, तो ये टाइम आपका है। सिर्फ टाइम में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक बड़ी सी स्माइल खुद के लिए देनी है और दूसरी स्माइल मेरे लिए। चलिए वही शुरू करते हैं, ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा सा गाना है, इंजॉय कीजिए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:23 हो चुके हैं दोस्तों, और मुझे बताइए कि इस समय कौन एक बड़े से कप में चाय पी रहा है। मुझे मैसेज कीजिएगा 5499129 पर, क्योंकि

0: मुझे देखना है कि मेरे जैसा कौन ऐसा चाय पीता है जो बड़े से कप में पीता है। और छोटे छोटे कप होते हैं कईयों के पास, और उनके कुछ सिलेक्टेड कप्स होते हैं, उनके कलर अलग से होते हैं, उनका डिज़ाइन अलग सा होता है, और कई बार एक ही कप किसी के पास 4 साल से 5 साल से भी होता है, और वो बोलते हैं मेरा कप टच मत करना क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। शायद किसी अपने ने दिया होता है और उसी में उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है। चलिए भाई, आप जो भी कप में पिए, पर हम यही कहेंगे आप मुस्कुराते हुए पिए, पर जो भी चाय पिएंगे तो उसको बेटर होगा कि आप विदाउट शुगर लें। आपकी मॉर्निंग अगर फीकी से शुरू होगी ना, गानों की जो मिठास है वो चलती रहनी चाहिए, बट जो चाय है अगर आप फीकी पियेंगे, मतलब उसमें कोई शुगर नहीं होगी, कुछ मत डालिए, तो आपको भी शुगर अवॉइड करेगी, कहेगी अरे ये मेरे पास, मतलब मुझे लेता नहीं है तो मैं भी इसके पास नहीं जाऊंगी। और सबसे बढ़िया बात यही है कि आपकी जो चाय है, या आप दूध ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, विदाउट शुगर लीजिए जिसमें चीनी ना हो, तो आप देखिएगा आपका मॉर्निंग तो बहुत ही सुंदर जाएगा, पूरे दिन में भी आपको क्रेविंग नहीं होगी। और अगर आपको लगे कि आपको नहीं चाहिए शुगर, तो हाँ दोपहर है, 11 बजे के बाद आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, पर हम अभी बोलते हैं मॉर्निंग की जो चाय है सुबह सुबह की, वो फीकी लीजिएगा, एंजॉय कीजिए मीठे मीठे गाने।
1: Wake up with the sun and the sound of fun. RM2 Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 36 मिनट हो चुके हैं और राइज एंड शाइन में जो हमारे प्यारे से लिसनर्स हैं जो हमारे साथ सुबह सुबह आज जुड़ जाते हैं, कई लोग तो बहुत जल्दी उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, उनको बहुत से काम करने होते हैं और फिर बस अपने मैसेजेस छोड़कर चले जाते हैं अपने काम की ज़िंदगी में। तो कोई बात नहीं, हम भी आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए उतने उत्सुक होते हैं कि आज हमारे किस दोस्त ने क्या मैसेज भेजा। चलिए जी, इस समय हमारे साथ जयशन जी जुड़े हुए हैं और अपने परिवार और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम चलाएंगे, नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा। सुरेश शर्मा साजदा जुड़े हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ और कह रहे हैं मॉर्निंग RM2 रेडियो मस्ती के साथ होती है तो हमारी मॉर्निंग तो बनती है और हमारा दिन भी बन जाता है। थैंक यू सो मच आपका। उसके साथ में नसरीन जी के लिए प्यारा सा गाने की फरमाइश की है अब्दुल अंसायरा बानो ने और कह रहे हैं हैप्पी फ्राइडे सभी को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपका भी फ्राइडे बहुत अच्छा हो, आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा हो और जब मॉर्निंग मंडे शुरू हो और उस टाइम हम भी साथ होंगे आपके, तो बस आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे क्या बात है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में आप सबकी मंडे शुरुआत होगी। तो चलिए, इसके साथ में ही एक प्यारा सा मैसेज और आ गया। हमारी एक कविता बर्तन जी साथ दे रही हैं और लवली मामी माला जी का आज बर्थडे है और उनको विश करना चाहते हैं और कहते हैं आपका साथ बहुत ही खूबसूरत है, हमेशा मेरे साथ रहो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बोलेंगे माला जी हैप्पी बर्थडे। रवीना जी का भी मैसेज आ गया और सभी को बोल रहे हैं टीम गुड मॉर्निंग। उसके साथ में एक प्यारी सी साधना जी भी आ गई लालमारी से और कह रही है गरम गरम चाय के साथ आप सबका स्वागत है। मैं तो कहती हूँ गरम गरम चाय आप लीजिए, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। एंजॉय कीजिए अपने गाने, थोड़ी देर में जुड़ पाएंगे आप हॉरोस्कोप के साथ।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Your daily horoscope.
1: RM2 Radio Musti.
3: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। उम्मीद है आज की सुबह मुस्कान और नई ऊर्जा के साथ शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं आज आपका राशिफल आपको किस और इशारा दे रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं
4: एरीज मेष राशि।
3: अगर आज काम थोड़ा ज़्यादा लगे तो घबराइए मत, एक एक कदम बढ़ाइए, मंजिल खुद करीब आती जाएगी। आज आपकी पॉजिटिव सोच आपका सबसे बड़ा साथ बनेगी। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 5।
4: टॉरस वृषभ राशि।
3: आज अपने काम के साथ खुद का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक आपको तरोताज़ा रखेगा। शाम तक मन को सुकून महसूस होगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
4: जेमिनी मिथुन राशि।
3: आज आपकी एक अच्छी बात किसी का दिन बना सकती है। ऑफिस हो या घर, मुस्कान बनाए रखिए। नई सोच आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
4: कैंसर कर्क राशि।
3: आज हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। सब अपने समय पर होगा। अपने मन की शांति को सबसे पहले रखिए। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
4: लियो सिंह राशि।
3: आज आपकी मेहनत पर लोगों की नजर जाएगी। जो जिम्मेदारी मिले उसे पूरे विश्वास से निभाइए। आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान बनेगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
4: वर्गो कन्या राशि।
3: आज अपने दिन की शुरुआत बिना जल्दबाजी के कीजिए। हर काम अपनी रफ्तार से पूरा होगा। खुद पर भरोसा रखिए, दिन अच्छा रहेगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 1।
4: लिब्रा तुला राशि।
3: आज किसी अपने

0: से दिल खोलकर बात कीजिए, रिश्तों में छोटी सी परवाह बड़ा फर्क लाती है। मुस्कुराहट आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज पुरानी बातों को पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए, नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है, अपने फैसलों पर भरोसा रखिए। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 9।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज कुछ नया सीखने या आजमाने का मौका मिल सकता है, अपने उत्साह को बनाए रखिए, अच्छी ऊर्जा पूरा दिन आपका साथ देगी। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 4।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज काम की सूची एक एक करके पूरी कीजिए, जल्दबाजी से बचेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, दिन के अंत में संतोष मिलेगा और आप खुश रहेंगे। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपकी नई सोच लोगों को पसंद आएगी, अच्छे सुझाव देने से पीछे मत हटिए, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज अपने लिए कुछ पल जरूर निकालिए, मन हल्का रहेगा तो काम आसान लगेंगे, अपने आसपास खुशियां बांटते चलिए। लकी कलर है पीच, लकी नंबर है 2। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल, अच्छी सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा नजरिया ही हमारे दिन की सबसे खूबसूरत बना देता है। मैं थी आपके साथ पूनम, अपने इस दिन की शानदार शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty. Musty. Musty. Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले को पिनो ने टूर डे फ्रांस फार्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरी मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. गणराज्य के राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया. कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जूलियो जोगाओ के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया. वहीं आदरिया जुवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. रोजिल की आतसू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई. उनके वकील शाफिक चतुर के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है. और विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया. और अब मौसम की रिपोर्ट. हमारे इलाके पर पूर्व की ओर से आने वाली तेज और अस्थिर हवा पाई जा रही है. अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर. कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दिन के दौरान धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा. ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है, अन्यत्र मौसम सुहाना रहेगा. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं. प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं. पूर्वी प्रांत में दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. आज के लिए सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54 पर. तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दे. नमस्कार.
7: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:09 हो चुके हैं. चलिए उठिए, तैयार हो जाइए, अब काम पर जाने का वक्त हो गया है. चाय खत्म, न्यूज़पेपर पढ़ लिया और एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर ले आइए. आज जो भी करें मन से कीजिएगा, मस्ती से कीजिएगा, क्योंकि ये दिन आपका है और आप कमाल के हैं. क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लेंगे आप सभी के मैसेज. अगर आपने अभी भी कोई मैसेज करना है तो कर सकते हैं 5499124 पर. इंजॉय कीजिए अपने गानों को और अपनी मॉर्निंग को बनाए प्यारी प्यारी खुश मिजाज वाली. ये गाना जो है ना सबसे प्यारा सा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत और सुभाष घई की आवाज़ में मेरी जंग से. इंजॉय कीजिए दिस सॉन्ग.
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
3: Are duniya hai ek latifa, sunta ja aur hasta ja. Jeene ka seekh tareeka sahiba aur peene ka seekh tareeka. Jump, jump, jump, jump.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:23 हो चुके हैं और आप सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं हम, क्योंकि आप पहुंच गए अपने अपने जहां पे जाना था और निकल रहे हैं जहां पे आपको जाना है. पर थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए हमारे लिए, क्योंकि ये वक्त है आपके मैसेजेस का. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. महिन सर इस समय इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग सभी को कह रहे हैं. रेशमा जी, मामा, पापा, दीपा, रति, ओजस्वी, लविशा, किशन, बॉबी एंड सचिन के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और सबको बहुत ही प्यार दे रही हैं. बाबू धनवेश्वर जी साथ दे रहे हैं, अपनी पत्नी सुनीता जी, रेखा, निशा एंड देवदास फैमिली के साथ में और इंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग को हमारे साथ आरएम रेडियो मस्ती, जो आपके साथ 24 आवर्स रहता है. और कह रहे हैं ये है तो फिर क्या गम है, क्या बात है, थैंक यू सो मच. सुया बिहारी जी चाय पी रही हैं इलायची वाली और कह रही हैं आरएम रेडियो मस्ती होता है तो इंजॉय करना बनता है. बिल्कुल बनता है, तो हम तो आपको यही कहेंगे हमारे साथ रहें, इंजॉय कीजिए. साथ में हेमलता भूजन जी अपने परिवार और फ्रेंड्स को बहुत विशेष दे रही हैं और कह रही हैं बहुत मजा आ रहा है गाने सुनने में, तो बस गाने सुनते रहिए, आपका ही प्रोग्राम है.

विक्रम भूपन जी, हिमलता भूजन, स्वीटी गंगू एंड भारती, सभी के लिए बहुत सारा प्यार। और नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम जाएगा, किशन रघुनाथ जी साथ दे रहे हैं और अपनी वाइफ माला एंड रिया, दो डॉटर्स रिया एंड जिया के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और उनको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मॉर्निंग आर एम टू रेडियो मस्ती और पूरा दिन आप सबके साथ मजा आता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए और अपने परिवार के साथ हर तरफ हर जगह खड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर आपका। और आज दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई और एक उनके खास कुशल जी का बर्थडे है और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं उनके और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस खास इंसान के लिए, बहुत ही प्यारा दोस्त कह लो, परिवार कह लो, उनके लिए ये मैसेज ज़रूर पढ़ना और कहना ये आपके लिए कुशल जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: 6:30 हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बबलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जो लिजोंगाओ के इस्तीफे को स्वीकार किया। वहीं अद्रिया जवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। रॉयस हिल के आत्सू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया। और विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।
1: Tangerine get the most beautiful victory in our hometown. Pup Pizza hits them hard now in the polka dot jersey. Jury doesn't have the legs through the centre. It's Kim Lacour. Kim Lacour, the Mauritian. Kim Lacour wins into Tournon-sur-Rhône. A beautiful stage win.
0: Tour de France femme Kim Lacour Pinot qui dit c'est Mauritius mais jashn ka mahol. मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। उनको सुनती हैं।
2: Yeah, Elisa closed me down, but then when Liana Marcus made an attack from the back, I knew it was going to happen because that's the only way she can win a race like this. And I had to close the gap myself, and I was really, really dead. I was on the limit, and yeah, I can't believe I still had the legs to sprint. It was really hard. It was really this close before I could give up. But yeah, it's just. I will never give up after this big effort my team did. Of course, we've got GC ambitions, but winning a stage in a Tour de France is very special. You know, people don't really remember top 10, top 5 riders in Tour, but they do remember stage winners.
0: Champion cyclist Kim Lecoupiano ne kal Montbrison se Tournon-sur-Rhône ke beech ayojit chhathe charan mein jeet darj ki. Daur ke dauran yantrik kharabi ke karan उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए पहले मुख्य समूह को पकड़ा, फिर अग्रणी समूह में शामिल हुई और अंत में स्प्रिंट फिनिश में बाजी मार ली। ये उनके करियर की एक और प्रतिष्ठित जीत है। खबरों में आगे, गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। उनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं।
3: Accepter sa responsabilité là, vous travaillez pour le pays, vous faites déjà fait mon travail comme parlementaire, posez-moi une question et

0: trabalho e da população. Veja que o governo oferece o trabalho de 900 reais.
1: याद रहे कि बुधवार रात को फोर मिलिटों प्रोग्रेसिस द्वारा चेतन बाबूलाल को विपक्ष नेता बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। कल दोपहर एमएसएम के एकमात्र सांसद जूले जोंगाओ ने विपक्ष नेता के पद से अपना इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर पीएमएसडी के आर्यन जीवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रणव बिहारी, याचना मिश्रा।
2: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लांश ग्रन रिवर साउथ ईस्ट के सांसद का मानना है कि उनके पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आवश्यक योग्यता और क्षमता है। वर्तमान में एफएमपी यानी फोर मिलिटों प्रोग्रेसिव विपक्ष का वह दल है जिसके पास सबसे अधिक सांसद हैं। पार्टी के कुल 3 निर्वाचित सांसद विपक्ष में हैं। कल दोपहर जूले जोंगाओ, जो विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं, स्टेट हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने विपक्ष के नेता के पद से अपना इस्तीफा दिया। वे पिछले 20 महीनों से इस पद को संभाल रहे थे। वहीं पीएमएसटी के आदरियां जीवाल ने भी विपक्ष के व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा एफएमपी और जूले जोंगाओ दोनों शनिवार को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे।
1: ब्राजील के आत्सू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शफीक चतुर के अनुसार इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। उनसे विशेष रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में सवाल किए गए, जिसे रीयन टापू और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस की तस्करी से जुड़े मामले की जांच के तहत जब्त किया गया है। लोविना सोफी, याचना मिश्रा।
2: वेरोनिक लेगोविन गुरुवार को सुबह लगभग 9:30 के बाद रुजिल स्थित एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट के कार्यालय पहुंची। जांचकर्ताओं ने उनसे उनके नाम पर पंजीकृत एसयूवी वाहन के बारे में पूछताछ की, जिसकी पुलिस इस मामले के सिलसिले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वाहन से कथित तौर पर गांजे के निशान मिले हैं। सांसद ने कथित रूप से बैंक से संबंधित दस्तावेज पेश किए, जिनसे ये साबित होता है कि उन्होंने वाहन खरीदने के लिए लोन लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि वे इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास एक औपचारिक गाड़ी मौजूद है। वेरोनिक लेगोविन ने ये भी बताया कि कुछ समय से वे अपने पति के साथ एक ही घर में नहीं रह रही हैं, जिसका कारण वैवाहिक समस्याएं हैं। वहीं गुलशन गोविंद के साथ भी गुरुवार को दोबारा पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से उनके घर से जब्त किए गए गांजे के पौधों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे गांजे का सेवन करते हैं, उसकी खेती नहीं करते। उनके अनुसार ये गांजा केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए था और वे घर के अन्य लोगों की जानकारी के बिना अक्सर घर की छत पर इसका सेवन करते थे। गांजा तस्करी के इस मामले की जांच अभी जारी है, साथ ही इस दंपति की संपत्तियों की भी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा जांच की जा रही है।
1: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है, क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। पोर्टली में जलापूर्ति का समय सुबह 4 से 8 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की गई है। ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। साथ ही 17 जून से प्लेनविलहेम्स मोका तथा रिवियनवा के कुछ हिस्सों में लागू जल आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। सृजन करना, विकास करना और आगे बढ़ना, स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये सफ़र अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, योग्य मानव संसाधनों का अभाव और सीमित साधनों के साथ

0: लगातार नवाचार करने की आवश्यकता जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच युवा उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। इसी वास्तविकता को केंद्र में रखते हुए लाप्लाज फैक्ट्री ने अपने लेट्स मीटअप कार्यक्रम में उद्यमियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाया। इस आयोजन की थीम रही डू मोर विद लेस। लाप्लाज फैक्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिशेल कोडानी ने के अनुसार दूरदृष्टि और प्रेरणा वे मूलभूत शक्तियां हैं जो चुनौतियों और सीमाओं को अवसरों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का है।
1: लाप्लाज फैक्ट्री के सीईओ मिशेल कोडानी कहते हैं, इसमें वास्तव में विरोधाभास है। सृजनात्मकता तब ज्यादा उभर कर सामने आती है जब एक विजन हो, प्रोत्साहन हो और साथ ही बाधाएं भी हो। संसाधन की कमी एक तरह की बाधा है। इसी से हम योग्य ठेकेदारों की पहचान कर पाते हैं। वे हमेशा उचित और कारगर समाधानों की तलाश में होते हैं जिससे वे बाधाएं पार कर पाते हैं। ठेकेदारी के लिए ये दृष्टिकोण और रवैया रखना सफलता के लिए अनिवार्य है। समस्याओं का सामना करने से उनमें ज्यादा सृजनात्मकता और इनोवेटिव विचार पैदा होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चुनौतियाँ प्रेरणा की तरह होती हैं जो उन्हें किसी भी हाल में सफल होने के लिए आगे बढ़ाती हैं।
0: तो ये विवरण अदिति गनवा अवतार का रहा। लिसालिन में पाई गई सील अभी भी अधिकारियों की निगरानी में है। बुधवार को कृषि उद्योग मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर फाब्रिस दावीद घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि उनके वहां पहुंचने तक ये समुद्री जीव समुद्र तट छोड़ चुका था। उनके अनुसार ये संभव है कि सील भोजन की तलाश या फिर आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए समुद्र और तट के बीच आवाजाही कर रहा हो। फाब्रिस दावीद ने बताया कि उनके मंत्रालय की टीमें लगातार इस समुद्री जीव की निगरानी कर रही हैं। यदि आने वाले दिनों में ये अभी भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है तो अधिकारी उसे गहरे समुद्र तक सुरक्षित पहुंचाने पर विचार करेंगे ताकि वो अपने प्राकृतिक आवास की ओर वापस लौट सके। आशी बेचू ने जूनियर मिनिस्टर फाब्रिस दावीद से बात की। विवरण याचना मिश्रा का।
2: On fait quand même tenir à venir chez les lieux pour voir effectivement l'éléphant de mer n'est pas là en ce moment. Il est possible qu'il y ait fait.
3: हम जब स्थल पर आए तो सील यहाँ पर नहीं था। वो शायद खाने गया होगा जिसके बाद वो यहाँ आराम करने वापस आएगा। मैं फिशरीज के निदेशक और एल्बियों के रिसर्च सेंटर के एक विशेषज्ञ के साथ यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि निगरानी बरकरार है। यदि कुछ दिनों तक ये सील यहीं पर रहा तो हम उसे सागर तक जाने में मदद देंगे। जनता से मांग है कि वो सील के पास न जाएं। ऐसा हुआ तो वो डर जाएगा, तनाव में आ जाएगा। दूरी बनाए रखें ताकि समय आते सील अपनों के पास लौट जाए।
0: विदेशी स्तर पर अमेरिका के न्यू मेक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले संभावित खतरों के बारे में जनता को पर्याप्त चेतावनी नहीं दी। ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में मेटा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा न्याय आदेश माना जा रहा है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मेटा एक सार्वजनिक उपद्रव की तरह है जिसकी तुलना वायु प्रदूषण से की जा सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि ये राशि एक खास कोष में जमा किए जाए जिसका उद्देश्य भविष्य में बच्चों को होने वाले नुकसान को कम करना होगा। ये आदेश पहले से लगाए गए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने के अतिरिक्त हैं। इस प्रकार मेटा पर कुल वित्तीय दंड 942 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस बीच मेटा ने इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से नाराजगी और हथियार

0: दरों के घटते भंडार को लेकर दोनों के बीच विवाद की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने भी इन रिपोर्टों को 100% फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दरअसल वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि कैंप डेविड में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद से घटते भंडार पर हेक्सेट से नाराजगी जताई थी। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर कुछ तेज और अस्थिर हवा चल रही है पूर्व की ओर से। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर में धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम जो है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। पूर्व में लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54 पर। खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। मॉरिशस की साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस फॉर्म के 6ठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जूलिया जागो के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। वहीं अद्रिया जुवाल ने ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ब्राजील के आजसू में कल सांसद वेरोनिक लुगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया। विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। 6:47 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचा जा रहा है कादर के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: ब्रेंच रोड लालमाटी में 50 साल के 50-year-old श्री विनय जियाना, जो विकास से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 इनकी पत्नी श्रीमती लीना जियाना के मकान ब्रेंच रोड लालमाटी से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया था पास्ट 11 AM। F4 हाउसिंग स्टेट गोखुला में 64 साल की 64-year-old श्रीमती अनुराधा जिबना पैदाइशी नाम सीसरन, जो आशा से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके पति रोहित जिबना के मकान F4 हाउसिंग एस्टेट गोकुला से उठाकर दाह संस्कार के लिए लामिचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड NS फ्लोरो में 72 साल की 72-year-old श्रीमती निर्मला जदन पैदाइश नाम हरनोत, जो लता से जानी जाती

तिथि की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रूट रॉयल एनएस फ्लोरेंस से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कॉर्प्स मिलिटेयर में 24 साल के 24-year-old जनाब मोहम्मद शर्फी उल्ला सलमान जीतू, जनाब मोहम्मद शर्फी उल्ला सलमान जीतू जो सलमान से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुपहर 3 बजे जनाब फरीद जीतू बम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कॉर्प्स मिलिटेयर से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कौंडे मास्क का कब्रिस्तान जा जाएगा। फिनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 73 अबाटुआ स्ट्रीट ओशबुआ में 82 साल की 82-year-old श्री भेरिता प्रसाद बंसरोई, श्री भेरिता प्रसाद बंसरोई जो जयराज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे अश्विन बंसरोई के मकान नंबर 73 अबाटुआ स्ट्रीट ओशबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। कोपेरेटिव गली ला फ्लोरा में 58 साल के 58-year-old श्री देवराम बलिया जो संजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान कोपेरेटिव गली ला फ्लोरा से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रूट रॉयल मोंटाइन ब्लांश में पुलिस स्टेशन के करीब 68 साल के 68-year-old श्री परमानंद ओबिलक जो टम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुजाता ओबिलक के मकान रूट रॉयल मोंटाइन ब्लांश से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोंटाइन ब्लांश के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। बोआडवाजो ला रोजा में 52 साल के 52-year-old श्री सुक्रिवेन दालिदू जो सेयोम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे की पत्नी श्रीमती कंदन के रानी कंदन के मकान बोआडवाजो ला रोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। फ्लैट सी 13 NHDC कैप मालोरे में 33 साल की 33-year-old श्रीमती कृति भुनमुन पैदाइशी नाम मोहन जो पूजा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी माँ प्रतिमा मोहन के मकान फ्लैट सी 13 NHDC कप मालोरे से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉइंट पीमाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रूट रॉयल बोबोआ सेंट पियर में 70 साल के 70-year-old श्री गिरधारी भट्टू जो भाई गोली से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे की पत्नी श्रीमती देवी भट्टू के मकान रूट रॉयल बोबोआ सेंट पियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। अविनी बंगाली सुदना काट्रोबोन में 76 साल की 76-year-old श्री विनोद जयकरण की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान अविनी बंगाली सुदना काट्रोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और रूट रॉयल पेटिट रिवियर में 72 साल के 72-year-old श्री क्रिया शक्ति कुमार ध्रुपद राव भूकन जो कुमार से जाने जाते थे और मुसलमान बुसित थ्रोसिया क्यूपी रहते थे की मृत्यु हो गई है।

0: अर्थी जो है आज दिन के 2:30 बजे मुहा ओट रॉयल पिचित रिवियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

अच्छा तो पूनम अब चलती है, लेकिन आपके लिए अभी मजा खत्म नहीं हुआ है। मनीषमा आ रही है और साथ में ले के आ रही हैं ढेर सारे गिफ्ट एंड वाउचर्स, धमाकेदार मस्ती। तो लाइन मत छोड़िएगा, इंजॉय कीजिएगा अपना डे, अपना शो। मेरी तरफ से बाय बाय, इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं दोबारा से जल्दी से जल्दी।

0: 7th of August 2026 हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप? फ्राइडे का दिन आ ही गया। मैं जानती हूँ यार, बहुत सारे लोग अभी उठ ही रहे हैं, कह रहे हैं यार देरी होगी आज तो, क्यों ना वीकेंड शुरू हो जाए अभी के अभी। यही तो स्पिरिट होनी चाहिए, यही तो दिन भर का स्पिरिट होनी चाहिए आपके लिए। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी थोड़ा फंसा शुरू हो चुका है, उनका ये जो ट्रैफिक का सिलसिला हर रोज सेम टू सेम दिन डिटो, कुछ बदला नहीं। कोई बात नहीं, क्यों फ्रस्ट्रेट होना है, एक्सेप्ट करना। देखो एक बात मैं कहना चाहती थी कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हो, माने कि सारी स्थिति में ये लागू है। यस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ यू डील, हाउ यू इंटेंड टू डील विद योर सिचुएशन एंड एवरीथिंग। सो लाइफ इज गुड, बस आप उसको अच्छी तरीके से, अच्छी नजरिए से देखना तो शुरू कर लो। आगे आगे बस देखिए होता है क्या। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम हियर, इट्स योर मॉर्निंग बीट विद मी मनीषमा।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: चीज़ बड़ी

0: टुगेदर टू मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली फॉर यू फॉर योर मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन हियर वी गो लेट्स रजिस्टर राइट नाउ फॉर योर बर्थडेज
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो आरएम2
2: रेडियो मस्ती
0: अच्छा समझा

0: सकती हूँ कैसे करना चाहिए। वैसे आपके दिमाग में और आपके फैमिली में अगर आपके जहन में आ गया कोई जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो एक काम कीजिए, अपना नाम, अपना फोन नंबर प्लस द पर्सन्स बर्थ डेट एंड द नेम ऑफ द पर्सन एंड द फोन नंबर ऑफ द पर्सन आल्सो यू सेंड मी रजिस्टर राइट नाउ, क्योंकि 7:22 पर हम फोन करने वाले हैं। वी ट्राई टू डू द सरप्राइज इन अ प्रॉपर मैनर। भेजो तो के तो मैं बस ऐसे ही पढ़ लूंगी, सरप्राइज कैसे होगा। इट्स गुड ना टू मेक पीपल फील गुड आल्सो। तो बताइएगा कौन है जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनका उनका नाम और उनका फोन नंबर प्लस अपना नाम खुद का प्लस अपना खुद का फोन नंबर भेजिएगा दिस नंबर 5491294 पर। ऑल द बेस्ट एंड बी द लकी विनर ऑफ अवर सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। चलिए जी अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन वी बी कमिंग बैक विद बंधु 2.0 कॉकटेल 2 मूवी से। हैव अ फैबुलस मॉर्निंग आउट देयर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा, अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए, आप तोहर अपिकाशों कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा। सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला। जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: Sikkim Group, a lifetime commitment.
4: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
1: RM2
5: Radio Musty.

एक्चुअली कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस फॉर द बर्थडे एंड ऑफकोर्स किसी खास इंसान को आप जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते तो ये नंबर तो है ही, नो डाउन कीजिए 5491294 पर।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने सारी कहानियाँ हर रोज़ हमको मिल जाती है, लेकिन हम साफ साफ तो नहीं कर पाते होने, लेकिन अभी के लिए हमने बस कुशल को फ़ोन किया जिनका आज जन्मदिन है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे के साथ तू कुशल। वैसे दीपा ने मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटी का बॉयफ्रेंड है, क्या आप उनको दोबारा से फ़ोन कर सकते हैं? तो कुशल जी, हमने फ़ोन किया, थोड़ी सी शर्मीले हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी होने वाली सास की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ऊपर से आई गेट हियर अ वाउचर फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट। लेडीज एंड जेंटलमैन, विच गोज आउट टू कुशल, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे न सिर्फ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सभी जो आज अपना जन्मदिन मना भी रहे हैं वो लोग, जी हाँ, जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशंस।

0: रेडियो मस्ती।
1: और साथ ही साथ हमारे साथ है पूनम भरत जो रहती है हैप्पी। तो आज मेरी भतीजी का जन्मदिन है, वो 14 साल की हुई है, त्रिशा राम तोहल प्रेमानियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, ब्यूटीफुल बर्थडे सॉन्ग फॉर जीजा जी, रोशन रख तू थ्रू द डू से, बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल फैमिलीज। एंड यहाँ पर हेलो जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल दोज ट्यूनिंग टू मेरे रेडियो मस्ती, सेइंग गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। Happy birthday!
2: Morning beat, a good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

ऑफ यू नीति मोहन की आवाज में 7:28 हुए थोड़ी देर में स्पोर्ट्स अपडेट्स एंड द ट्रैफिक न्यूज़ स्टे वेल कनेक्टेड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल फ्राइडे अहेड.

0: ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करते. वेरी गुड.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: ऐसे कहते हैं बचपन से सुनते आए हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है. गर्मा गर्म वेजिटेबल पराठे विद कर्न स्प्राउट सैलेड या बनाना स्मूदी कुछ भी हो जाए, सिंपल, वेरी वेरी वेरी क्विकली. लेकिन मिस ना कीजिए, ये सब टेस्ट नहीं होते बल्कि न्यूट्रिशियस भी है. एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बूस्ट कर देता है. तो आज अपनी प्लेट को बनाइए कलरफुल और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए. चलिए, ऑल दोज हु आर जस्ट स्किप द मील कोई बात नहीं, लेकिन यू जस्ट नीड टू हैव सम ओट्स विद यू एंड एनीथिंग दैट यू नो मेक यू फील बेटर. एग्स को बॉइल करके रख दीजिए, फ्रेश फ्रूट्स को योगर्ट के साथ भी खा सकते हो या फिर एक सिंपल सिंपल स्मूदी बना सकते हो. ये सब आपको देंगे लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी. हेल्दी ब्रेकफास्ट मींस हेल्दी मूड और हेल्दी डे. जस्ट ईट स्मार्ट एंड स्टे फ्रेश विद RM2 रेडियो मस्ती. गॉट हियर रूप दी रानी फॉर यू. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: देर न करते हुए स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के साथ अरविंद जी. गुड मॉर्निंग टू यू.
1: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वैसे इन दिनों मॉरिशस खेल जगत के सितारे चमक रहे हैं और ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, किम्बर्ली लेकू जैसी कहां मिलेगी. साइकिलिंग की हमारी महारानी ने कल टूर डी फ्रांस का 6th स्टेज जीता. एक मैकेनिकल समस्या के बावजूद किम्बर्ली की जीत हुई. फिनिश लाइन से 15 किलोमीटर पहले किम्बर्ली को बाइक बदलना पड़ा, पर किम्बर्ली स्प्रिंट में जीत पाई. किम्बर्ली को बधाई. ग्लासगो के बाद फ्रांस में भी मॉरिशस का झंडा सबसे ऊपर रहा. UEFA यूरोपा लीग के 3rd क्वालिफाइंग राउंड के मैच कल खेले गए. बेनफिका ने 6-1 के भारी स्कोर पर हार्ट्स को हराया. क्रप्स 1, काउवा 1, याग्लियनोनिया 2, रेंजर्स 1, मकाबी तेल अवीव 0, CSK 3, रादेक 0, बेसिकतास 1, लेच पोजनन 1, की 0, रेड इम्स 1, ओमोनिया 1, साल्सबर्ग ने 1-0 से पाफोस को हराया. अंदेलक की जीत PAOK के मैदान में 1-0 से और टून टीम ने 3-0 से विकिंगो को हराया. इंग्लैंड के लीग 1 में ब्रिस्टल सिटी 0 वॉल्सॉल 1. विनिसियस जूनियर रियल मैड्रिड में ही रहेगा. नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो भी 6 सालों का. विनिसियस जूनियर के जाने की बात चल रही थी. आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन तैयार थे, पर विनिसियस जूनियर ने कहा कि रियल मैड्रिड में 8 सालों का सफर कम है. अतिरिक्त 6 सालों का कॉन्ट्रैक्ट फिर आजीवन रियल मैड्रिड में. रियल मैड्रिड में विनिसियस जूनियर 128 गोल स्कोर कर पाया है. 2 चैंपियंस लीग टाइटल, 3 ला लीगा टाइटल और 1 कोपा डेल रे. विनिसियस रियल मैड्रिड का ही है और रियल मैड्रिड में ही रहेगा. फ्रांस न्यूज में मैनचेस्टर सिटी का गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्ड 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर लीड्स यूनाइटेड में गया. एक ब्रिटिश गोलकीपर के लिए ये नया रिकॉर्ड है. इससे पहले 2017 में एवर्टन ने 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर पिकफोर्ड को पिक किया था. वैसे गोलकीपर ट्रांसफर रैंकिंग्स में जुड़ गया है केपा अरिज़ाबालेगा 68 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और अलिसन 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर खरीदे गए थे. पेरिस सेंट जर्मेन से इब्राहिम एम्बाये को साइन करने के लिए लिवरपूल तैयार है. लिवरपूल सीरियस है, बातें काफी आगे पहुंची हैं. एम्बाये पेरिस सेंट जर्मेन छोड़ना चाहता है और लिवरपूल उसे खरीदने के लिए तैयार है. अफ्रीका के सबसे महंगा खिलाड़ी आइवरी कोस्ट का यान जियोमांडे 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर रियल मैड्रिड ने उसे साइन किया. अफ्रीका में नंबर 1. वैसे सबसे बड़ा ट्रांसफर नेमा एम्बापे और इसाक का है. 4th स्थान पर जियोमांडे डायमंड का दाम. क्रिकेट, भारत की टेस्ट टीम श्रीलंका में है. 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, पर आज एक 2 मैच है श्रीलंका 11 के खिलाफ. मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल फुटबॉल रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस वीकेंड 2 मैच हैं. कल शनिवार को सैटरडे मैच बोनाकोई की टीम रेड स्टार का मुकाबला रेनबो ग्रांबे से है और रविवार संडे को एसोसिएशन रोशनॉय वर्सेस स्पोर्टिंग बॉयज रिवेंज पर सभी मैच 3:30 रोशनॉय फुटबॉल ग्राउंड में. सो एक बार फिर हमारे हमवतन मॉरिशस की आन बान और शान किम्बर्ली को बधाई और सलाम. टूर डी फ्रांस में एक स्टेज जीतना हर एक साइक्लिस्ट का सपना होता है. पिछले साल की तरह इस बार भी किम्बर्ली कुपेना ने मॉरिशस का नाम रोशन किया. वैसे जीत के बाद सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं फ्रांस में बसे कई मॉरिशस के लोग उसको बधाई देने आए थे और नू नो भी वहां पर सुना गया. आशा करते हैं कि किम्बर्ली लेकू और आगे जाए और उसको कहेंगे अली मोरिस. नमस्कार, हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती. बाय बाय.
0: बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स अरविंद जी.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas, 100 roupies. Des pieds pas, 4 pieds pas, 295 roupies. Grand.

0: sur l'autoroute de Pâle jusqu'à l'entrée pour lui. Trafic au ralenti pour un véhicule qui pévine depuis le nord à travers l'autoroute M2 vers pour lui de Rochebois à Corgo. Circulation y a 6 fluide sur l'autoroute M3 sauf l'entrée des Bennes et l'ancienne route A1. Nous comptons bon nombre de véhicules, encore une fois, en direction de la capitale, avec coup de bande pour un ralentissement, principalement à Grande-Rivière-Nord-Ouest, Validji et Bell Village. Voilà, nous demandons toujours, reste prudent l'eau, la route, garde une distance de sécurité et bonne route à tous et bonne journée.
1: Thank you, have a good day to you, Sergent. Bye-bye. वैसे अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू टू प्लीज बी कॉशियस एंड वेरी वेरी पेशेंट एंड ऑल्सो को तो यू नो यू जस्ट गिव वे एंड बी द वन हुई समझदार ऑल्सो एंड यू नो बढ़िया दिल एंड यू विल सी कि अगर आप पेशेंट रहेंगे एक दूसरे को लेकर तो सारा कुछ टेंशन ये सब कुछ कोलिजन थोड़ा सा कम ही हो जाएगा. यू जस्ट गिव वे एंड लेट थिंग्स हैपन एंड डेवलप द वे इट इज. ओके जी, अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन ट्रिपी कमिंग अप फॉर यू.
2: RM2
3: रेडियो मस्ती,
2: मोमेंट्स दैट मैटर विद सीकम. जीवन के सबसे खूबसूरत पल स्क्रीन के आगे नहीं बल्कि उस सब जना संगे जियल जाला जिकरा हमने खुशी रहिला जा. यही खातिर सिकोम लगे जिंदगी के आसान बनाए खातिर डिजिटल माध्यम अपनाई ले है जा जिकर से आप सब औसन पल जस्ती बिताए जोन तोहर खातिर जस्ती मायना रखेला. एगो को ताशो खोजा था बस कुछ क्लिक में तैयार हो जाए अपन प्रीमियम के पैसा चुकाए खोजा था ये आसान बा. आप सब हमने के ऑनलाइन पेमेंट के सुविधा से हाली से आर बिना डरे एकदम सुरक्षित तरीका से उ चुकाए. अपन पॉलिसी देखे के हो या अपन एप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बाटे ये जाने खोजा था आप ये सब कहूँ से कबो भी अपन सुविधा के अनुसार करे सकब. सिकोम के डिजिटल सेवा के एक के गो मकसद है तोहर पूरा अनुभव आसान सीधा और बिना कोनो झंझट के बनाए के. काहे कि सबसे नीमन टेक्नोलॉजी उहे है जो तोहर जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा आनंद ले के समय दे जो सच्चाई में मायना रखेला. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला. It was moments that matter with Sikom.
4: Entre les mamans, on fait quoi? Et l'énergie à revendre? On a tous besoin d'une pause. Heureusement, McDonald's s'occupe de tout pour nous faciliter la vie. Pour les enfants, c'est la magie du Happy Meal. Espace de jeu, face painting et des animations gratuites. Retrouvez le programme complet des animations sur la page Facebook de McDonald's Maurice. McDonald's, les vacances se savourent ensemble. McDonald's, pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: 103.5
1: East, West,
0: 96.4 Center,
2: 99.4 RM2 Radio Masti,
3: Radio Masti,
2: the latest news and the greatest
4: time check. सुबह के 8 बजे हैं. सबको एक नमस्ते. शुरुआत ये निमन खबर संगे. टुडे फ्रांस फार्म में मॉरिशस के साइक्लिस्ट किम ले को पियनो इगो और ऐतिहासिक उपलब्धि अपन नाम कर लग. मॉरिशस के चैंपियन कार्ल मोब्रिजों से टूर शेरोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत ले लग, जबकि ये दिन उनकर खातिर कई गो चुनौती से भरल रहल. दौड़ के दौरान यांत्रिक खराबी आय के कारण उनका अपन साइकिल बदले के पड़ल. एक बावजूद उस शानदार वापसी करके मुख्य समूह के फिर से पकड़ लेलक. अग्रणी सवार के समूह तक पहुँचलक और अंत में स्प्रिंट फिनिश में जीत हासिल करलक. ई किमले को पियनो खातिर गो और प्रतिष्ठित और यादगार विजय है. इस शानदार प्रदर्शन से पूरा देश के गौरव प्रदान करलन और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस के नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करलन. गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल के काल 6 अगस्त के विपक्ष नेता नियुक्त करलन. इस तत्काल प्रभाव से लागू होल. याद रहे कि बुधवार रात के फोमिलिता फोगसी द्वारा चेतन बाबूलाल के विपक्ष नेता बनाए खातिर प्रस्ताव रखल गया रहा. इस बीच काल दोपहर में एमएसएम के एकमात्र सांसद जूली जोंगा विपक्ष नेता पद से अपन इस्तीफा दे दिलन. दूसरी तरफ पीएमएसडी के आद्रियन जिवाल भी ओपोजिशन व्हिप और रिपब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिलन. ब्राजील के आत्सुमे काल सांसद वेरोनिक लेगोविन संगे पूछताछ करला के बाद उनका राजाय के अनुमति दे देवल गल. उनकर वकील शफिक चतुर बुलन की स्तर पर उनकर खिलाफ कोनो आरोप दर्ज नहीं कर लगल बा. उनकर से खास रूप से उनकर नाम पर पंजीकृत एगो वाहन के बारे में सवाल करल गल, जिकरा रीजन टापो और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस के तस्करी से जुड़ल मामला की जांच के तहत जब्त करल गलबा. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी देश के कैन गो क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव कर लेबा, कहे कि जल संसाधन की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनल बा. अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति फजीरे 4 बजे से 7 बजे तलक और सांझ के 4 से 7 बजे तक करल जाए. दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई फजर के 5 बजे से 8 बजे तक और इस सांझ के 5 बजे से 7 बजे तक करल जाए. पोर्ट लुइस में जलापूर्ति के समय फजर के 4 बजे से 8 बजे और इस सांझ के 4 बजे से 8 बजे तक निर्धारित करल गलबा. इन नवा प्रावधान के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटा के कटौती करल जाए. ये व्यवस्था आवत सूचना तक लागू रही. साथ ही 17 जून से प्लन विलहेम्स मोका और विवियन वॉक के कुछ हिस्सा में लागू जलापूर्ति संबंधी प्रतिबंध 18 ईयर जारी रही. लेसालिम में पाल गल सील अभी भी अधिकारी के निगरानी में वाते. बुध के कृषि उद्योग मंत्रालय के जूनियर मंत्री फाबेज दाविद घटनास्थल पर पहुँचलन. हालांकि उकरा होजा पहुँचे तक इस समुद्री जीव समुद्र तट छोड़ दिले रहल. उनकर अनुसार इस संभव है कि सील भोजन के तलाश या फिर आराम और स्वास्थ्य लाभ खातिर समुद्र और तट के बीच आवाजाही करता. फाबिज दाविद बतेलन कि उनकर मंत्रालय की टीम लगातार इस समुद्री जीव की निगरानी करता. यदि आयुला दिन में अभी भी उही क्षेत्र में पाल जाए तो अधिकारी ओकरा गहरा समुद्र तक सुरक्षित पहुँचाए पर विचार करियन जा, जिमें वो अपन प्राकृतिक आवास की ओर वापस लौटी सकी. दूसरे देश के समाचार में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के उगा अदालत गुरुवार के मेटा के लेखा की सुरक्षा से जुड़ल मामला में 767 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त हर्जाना अदा

0: करे के आदेश देलक। अदालत के अनुसार कंपनी अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लैका के होई होला संभावित खतरा के बारे में जनता के पर्याप्त चेतावनी नहीं देने बा। ये लैका के सुरक्षा से जुड़ल मामला में मेटा के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ा न्यायिक आदेश मानल जात बा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट से नाराजगी और हथियार के घटते भंडार के लेके दोनों के बीच विवाद की खबर के पूरी तरह खारिज कर दिले हवन। व्हाइट हाउस भी ये रिपोर्ट के 100% फर्जी बता के बोलक कि ऐसन कोनो घटना नहीं हो बाती। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भेल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: थोड़ा जी ले फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. हमारा जो भोजपुरी लोगन सॉन्ग है स्पेशली फॉर ऑल दोज भोजपुरी लवर्स. 8:10 हो रहे हैं. वेलकम द सेकंड आवर फ्राइडे 7th of August में मनीषमा आपके साथ दे रही है टिल 9 AM. वैसे फ्राइडे का दिन है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं जानती हूँ अभी तक मेरी जो सारी जो कलीग्स हैं अभी तक फंसे हैं. वेल वेरी वेरी पेशेंस ऑन द रोड. कीप अप द गुड वाइब्स. यहाँ पर आपके मूड को और भी अच्छा करने के लिए इतने सारे प्यारे गाने. हाँ मुझे तो मार का मेगा फिल्म द मूवी भूल भुलैया टू सेट योर मूड एंड सेट योर डे. तो जी डे रही हमारी साथ लेते हैं अभी के लिए छोटा सा ब्रेक. पता करते हैं मौसम का हाल.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मौसम की रिपोर्ट. हमारे इलाके पर कुछ तेज और अस्थिर हवा चल रही है पूर्व की ओर से. अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर. कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर में धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा. ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम जो है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं. दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. आज सूर्योदय हुआ 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners!
0: RM2, Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: तुम्हार व्यूअर 8:18 हुए आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती। सो अभी के लिए आप मस्ती करिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए एंड स्टैंड चांस फॉर विनिंग 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC जो शुरू होने वाला है आज फ्रॉम द 12 अगस्त 2026 को और ये खत्म होने वाला है 16 अगस्त को, यस 16th of August 2026, जहाँ पर होने वाला है कहाँ पर SBICCPI एज फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM। तो चलिए सवाल ये रहा, आई एम सर्चिंग फॉर अ वर्ड, ओके इट्स अ नाउन, अ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू द राइट टू एंटर अ प्लेस, attend an event or travel on a bus, train, plane or anything else. etc. ओके जी बताइएगा, आई एम सर्चिंग फॉर अ वर्ड। वेरी सिंपल, वैसे जो हम गिफ्ट दे रहे हैं इसी में ही जवाब है। आई एम सर्चिंग फॉर अ वर्ड, अ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू द राइट टू एंटर प्लेस, अटेंड एन इवेंट और ट्रेवल ऑन अ बस, ट्रेन और प्लेन etc. बताइएगा कौन से वर्ड का हम को हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर ऑन 5499124 पर विद फुल नेम एंड एड्रेस के साथ, देन यू विल बी क्वालिफाइड।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Don du son à la MRE. MRE pour à l'aéroport, SSA et ICCC, le Charles Road, pour ce deuxième jour, don du son. Ainsi, le vendredi 7 août, MRE organise ce don du son de 8h à 16h à l'aéroport et à Integrated Customs Clearance Center, ICCC, le Charles Road, Plaine-Magnon. Pas oublié, don du son du côté de l'aéroport et ICCC, le vendredi 7 août, de 8h à 16h.
0: RM2
1: Radio

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: ओके जी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने बस डिटेल दिया और हम एक वर्ड को हम ढूंढ रहे थे. यहाँ पर आपको भेजना था सही जवाब ऑन दिस नंबर 5491294 पर. एंड आई आस्क अ क्वेश्चन, एक्चुअली अ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू द राइट टू एंटर अ प्लेस, अटेंड एन इवेंट और ट्रेवल ऑन अ बस, ट्रेन, प्लेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आई एम सर्चिंग फॉर दिस वर्ड. द वर्ड इज इटसेल्फ द टिकट. टिकट, यस. हमारे साथ हमारे लकी विनर हैं, उनका नाम है वनीशा सिगुलाम. कंग्रेचुलेशंस, आप रहते हैं मोंटे ब्लॉश. यस, वेरी हैप्पी फॉर यू. इन दिस मॉर्निंग शो में You're getting 4 entry tickets. Yes, you played with MEC and Rajasthan Works. And you won these prizes, 4 entry tickets and a food coupon for the Jain's Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI and LICS from the 12th of August 2026 till the 16th of August 2026 at SBI CCPI as from 10 a.m. till 9 p.m. So experience 5 days of shopping, entertainment and family fun featuring international shopping, home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show, a live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir, and Kanma show, Blood Donation Camp, Food Festival, everything organized by the Event Works Limited. Thank you. Have a wonderful day. Well, the game is powered by Rajasthan Works Limited.
0: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: बजकर 32 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मासी के साथ। चल लीजिए क्विक रिकैप फॉर दोज हु हैव मिस्ड द स्पोर्ट्स अपडेट्स इन द मॉर्निंग।
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद जी, एक बार फिर से
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वैसे इन दिनों मॉरिशस खेल जगत के सितारे चमक रहे हैं और ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, किम्बर्ली लेकू जैसी कहां मिलेगी। साइकिलिंग की हमारी महारानी ने कल टूर डे फ्रांस का 6th स्टेज जीता। एक मैकेनिकल समस्या के बावजूद किम्बर्ली की जीत हुई। फिनिश लाइन से 15 किलोमीटर पहले किम्बर्ली को बाइक बदलना पड़ा, पर किम्बर्ली स्प्रिंट में जीत पाई। किम्बर्ली को बधाई। ग्लासगो के बाद फ्रांस में भी मॉरिशस का झंडा सबसे ऊपर रहा। यूईएफए यूरोपा लीग के 3rd क्वालिफाइंग राउंड के मैच कल खेले गए। बेनफिका ने 6-1 के भारी स्कोर पर हार्ट्स को हराया। क्रप्स 1 काउवा 1, याग्लिनोनिया 2 रेंजर्स 1, मकाबी तेल अवीव 0 सीएसके 3, रादेक 0 बेसिकतास 1, लेच पोजनन 1 की 0, रेड इम्स 1 ओमोनिया 1, साल्सबर्ग ने 1-0 से पाफोस को हराया। अंदेले की जीत पीएओके के मैदान में 1-0 से और टून टीम ने 3-0 से विकिंगो को हराया। इंग्लैंड के लीग 1 में ब्रिस्टल सिटी 0 वॉल्सॉल 1। विनिसियस जूनियर रियल मैड्रिड में ही रहेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो भी 6 सालों का। विनिसियस जूनियर के जाने की बात चल रही थी, आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन तैयार थे, पर विनिसियस जूनियर ने कहा कि रियल मैड्रिड में 8 सालों का सफर कम है। अतिरिक्त 6 सालों का कॉन्ट्रैक्ट, फिर आजीवन रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड में विनिसियस जूनियर 128 गोल स्कोर कर पाया है। 2 चैंपियंस लीग टाइटल, 3 ला लीगा टाइटल और 1 कोपा डेल रे। विनिसियस रियल मैड्रिड का ही है और रियल मैड्रिड में ही रहेगा। फ्रांस न्यूज में मैनचेस्टर सिटी का गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्ड 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर लीड्स यूनाइटेड में गया। एक ब्रिटिश गोलकीपर के लिए ये नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2017 में एवर्टन ने 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर पिकफोर्ड को पिक किया था। वैसे गोलकीपर ट्रांसफर रैंकिंग्स में जुड़ गया है केपा अरिज़ाबालेगा 68 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और अलिसन 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर खरीदे गए थे। पेरिस सेंट जर्मेन से इब्राहिम एम्बाये को साइन करने के लिए लिवरपूल तैयार है। लिवरपूल सीरियस है, बातें काफी आगे पहुंची हैं। एम्बाये पेरिस सेंट जर्मेन छोड़ना चाहता है और लिवरपूल उसे खरीदने के लिए तैयार है। अफ्रीका के सबसे महंगा खिलाड़ी आइवरी कोस्ट का यान जिरोमांडे 120

0: million pounds sterling per Real Madrid ne use Sankia, Afrika mein number one. वैसे सबसे बड़ा ट्रांसफर नेमार, एम्बापे और इसाक का है। चौथे स्थान पर जियो मांडे डायमंड का दाम। क्रिकेट, भारत की टेस्ट टीम श्रीलंका में है, दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे पर आज एक टू मैच है श्रीलंका 11 के खिलाफ। मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल फुटबॉल रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस वीकेंड दो मैच है। कल शनिवार को सैटरडे मैच बोनाक्यू की टीम रेड स्टार का मुकाबला रेनबो ग्रांबे से है और रविवार संडे को एसोसिएशन रोशनॉय वर्सेस स्पोर्टिंग बॉयज रिवेज वहां पर सभी मैच 3:30 बजे रोशनॉय फुटबॉल ग्राउंड में। सो एक बार फिर हमारे हमवतन मॉरिशस की आन बान और शान किम्बर्लिक को बधाई और सलाम। टूर डे फ्रांस में एक स्टेज जीतना हर एक साइक्लिस्ट का सपना होता है। पिछले साल की तरह इस बार भी किम्लेकू पेना ने मॉरिशस का नाम रोशन किया। वैसे जीत के बाद सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं फ्रांस में बसे कई मॉरिशस के लोग उसको बधाई देने आए थे और नू नो भी वहां पर सुना गया। आशा करते हैं कि किम्बर्लिकू और आगे जाए और उसको कहेंगे Ali Maurice. Namaskar. Have a wonderful time listening Radio Masti. Bye-bye.
1: Have a good day to you, Arvind Ji. Vise, Ali Maurice. And thank you so much for staying tuned to us here on RM2 Radio Masti. Abhi ke liye le ek chota sa break. Then I'm going to continue with the best of song selections. Yahan par bahut sare log keh rahe ki abhi tak phase hai traffic mein. To take your time. No rush. I know thodi si problem ho sakti hai, lekin if you explain yourself well, सब ठीक हो जाएगा। ओके जी,
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: 10 roupies, 50 roupies, 100 roupies, 200 roupies. Oui, Ouvine, bien attendez. La Foire présente tout ce Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park. Van milliers lotiques à prix foufou. Cosmétiques, meubles, textiles et plus encore, et n'indice tout. Parata l'occasion là. Prends famille, voisins, camarades, vinfen les tout. Nous paye à Tanzut. La Foire Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park.
4: C'est la fête à la maison. La Foire
2: RM2 Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. From RM2.
1: Radio Musti.
2: यहाँ पर इतने सारे डेडिकेशंस आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं, एंड नॉट फॉरगेटिंग एनीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे, यू कैन जस्ट सेंड अस अ मैसेज. यहाँ पर हमको भी मालूम हो जाए कि आज अपना स्पेशल डे भी मना रहे हैं हमारे साथ ऑन 5499124 पर. हाय मनीषमा, कैन यू प्लीज डेडिकेट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिमाकेश मुरला जो आज 13 साल के हुए हैं, एंड डेडिकेशन फ्रॉम लवली सिस्टर पाविका. मामा पापा है नवीन, मदर है रेशमा. सो यहाँ पर हेलो RM2 रेडियो मस्ती, विश माय हस्बैंड किशन राम गुलाम ऑफ दिपिने वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विशेस ऑफ लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस फ्रॉम वाइफ दीक्षा. सो यले श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैव अ गुड मॉर्निंग टू यू टू. यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट बीपी रुखसार भी जुड़े हैं हमारे साथ. पूनम भरत भी पीतों से कहते हैं कि मेरे नीज का आज जन्मदिन है, वो 14 साल के हुए हैं. त्रिशा राम तो उनका नाम है जो रहती है प्लान मान्यो, कंग्रेचुलेशंस हैप्पी बर्थडे. एंड स्पेशल हेलो मनीषमा, मीठी मीठी चाशनी कैसे हो आप आरवी जी. हेलो गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली फॉर माधव जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ऑसम डे टू यू ऑल, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल टाइम ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. बो कुराज गुजार टू ऑल ऑफ यू जो कि पहुंच भी गए हैं काम पर.
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.
3: Teaser buddy. Teaser buddy.
4: Are chali chali. Hai kya chali.
2: चलिए जालिमा कोका कोला पिला दे नोरा फतेही के आवाज. एक्चुअली फीचरिंग दिस सॉन्ग इज नोरा फतेही. नॉट टू फॉरगेटिंग समवन रियली स्पेशल, आज बर्थडे है उनका कजिन रागिनी बहू.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: वैसे इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी, खुद की एनर्जी के साथ साथ आपकी ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट में है वो जो एनर्जी है उसको भी बरकरार रखनी चाहिए। वैसे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करना चाहते हो तो अपने डेस्क को क्लटर फ्री रखिएगा। जी हाँ, कभी हम संभाल नहीं पाते इतने सारे काम के बीच में, यू जस्ट फॉरगेट कि यार थोड़ा सा ऑर्डर, थोड़ा सा यू नो ये जो डिसिप्लिन है ऑन योर टेबल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने डेस्क को क्लटर फ्री रखिए, एक छोटा सा प्लान लगाइए। ये जो प्लान होता है आपको दिन भर में ऑक्सीजन देता रहेगा एंड देन यू विल फील बेटर, यू विल फील मोर एनर्जाइज आल्सो। और हर एक घंटे में डोंट यू फॉरगेट, अगर आप पूरा दिन बैठते रहते हो या फिर यू हैव सो मेनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आपको आपके बैठना ही ज़रूरी है, तो हर एक घंटे में 2 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक लीजिएगा। हाँ, यू जस्ट वॉक अराउंड, स्ट्रेच अ बिट एंड देन यू जस्ट गो बैक टू योर प्लेस। देखना जैसे कि फिर से शुरुआत होगी दिन का, दिन की शुरुआत। वैसे यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट, पानी पीते रहिएगा हमेशा हमेशा, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो, पानी पीते रहिएगा। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दिमाग ठंडा हो जाता है। और नॉट टू फॉरगेट ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट टू फॉरगेट टू स्माइल। जी हाँ जी हाँ, कलीग्स को एक छोटा सा स्माइल के साथ यू ग्रीट देम। और छोटी छोटी ये जो पॉजिटिव हैबिट्स है वर्क प्लेस को और भी हैप्पी और प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बना देते हैं। क्या कहते हो आप, सहमत हो?

0: ना अब हम आप हमसे वैसे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे गोज़ आउट टू विवेक, एक बर्थडे विश है विवेक सुखवाड़िया जो रहते हैं लाल माची, विशेज फ्रॉम पत्नी कविता, बेटे हैं विश फ्रॉम दो बेटी, सभी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड नॉट टू फॉरगेट ऑल्सो आपके सात बहनें हैं जो लाल माटी में रहते हैं और कहते हैं कि हर खुशी हो वहाँ जहाँ भी आप रहे मेरे भैया। ओके, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, इसलिए मैंने टाइम लेकर प्रोनाउंस किया है और आई सेड इट फॉर यू माय डियर। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विवेक जी। यहाँ पर रेडियो मस्ती गीता सीता भलराम फैमिली शत बिना से जुड़े हैं। ललिता जीतन कहते हैं टू ईच एंड एवरी लिसनर हियर वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
1: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
3: DJ Sakif will spin it out.
0: चलिए इसी गाने के साथ साइनिंग ऑफ मनीष मां, लेकर आ रही है और भी ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स नीलमणि।

0: देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं करुणा लालू। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार वेदिता, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किम ले कोपियनो ने टूर डे फ्रांस के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, फिर भी मॉरिशस की इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो शोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। याद रहे कि बुधवार को फॉर्मिलिता प्रोग्रेसिस द्वारा चेतन बाबूलाल को विपक्ष नेता बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कल दोपहर MSM के एकमात्र सांसद जो लेजांगा ने विपक्ष नेता के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। दूसरी ओर PMSD के आर्यन जुवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राजील के आत्सू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शफीक चतुर के अनुसार इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। उनसे विशेष रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में सवाल किए गए, जिसे रीजन टापू और मॉरिशस के बीच कथित 155.7 किलो कैनाबिस की तस्करी से जुड़े मामले की जांच के तहत जब्त किया गया। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है, क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। पोटू में जलापूर्ति का समय सुबह 4 से 8 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक निर्धारित हैं। इन नए प्रावधानों के तहत प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की गई है। ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में मेटा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा न्यायिक आदेश माना जा रहा है। और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: नमस्कार, 13 मिनट हुए हैं. मस्टी मॉर्निंग शो ऑन गोइंग है विद नमनी. गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? 5491294 पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार रहेगा. एंड ऐसा हो मैं बता देती हूँ कि होने वाला है यो होरोस्कोप टिप्स और एक सरप्राइज. तो यहीं पर जुड़ रहना आरएम2 रेडियो मस्ती पर. अभी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग गुजार टू ऑल ऑफ यू जो अभी कनेक्टेड है हमारे साथ.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे गाने से याद आया कि दिन भी हाइला से तेजी से बढ़ती जा रही है. इट्स फ्राइडे अगेन एंड वो भी अगस्त महीना का पहला फ्राइडे. किसी का दिन अमेजिंगली शुरू हुआ है और तो कुछ हाइला ये क्या हुआ और कैसे हुआ से हुआ. अगर मन में शंका है कि ये फ्राइडे कैसे गुजरेगी, नो वरीज जी, जल्दी लाने वाले हैं यो हॉरोस्कोप, वो भी लकी नंबर और कलर के साथ. तो नमनी के साथ यही पर कनेक्टेड रहना एंड एंजॉय करते रहिए अमेजिंग म्यूजिक को जो कि हो रहा है आपकी मस्ती मॉर्निंग शो में RM2 रेडियो मस्ती पर.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: वैसे खाबों का तो पता नहीं, लेकिन हॉरोस्कोप में क्या है ये तो बता सकती हूँ मैं।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: चलिए जानते हैं आज का राशिफल में क्या है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: आज आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। गुस्से पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है और फैसले सोच समझ कर लेना है। लकी कलर आज आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज घर और काम के बीच अच्छा बैलेंस बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से अच्छी बात हो सकती है। पैसों के मामलों में समझदारी दिखाइए। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अपनी बात प्यार से रखें, लोग आपकी बात को समझेंगे। छोटी सी यात्रा का योग भी बन सकता है। लकी कलर आज आपका है पीला और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: आज अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखिए। फैमिली के साथ वक्त बिताने से मन खुश रहेगा। किसी बात की ज्यादा चिंता ना करें। लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
0: आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबका ध्यान खींच सकता है। ऑफिस हो या बिजनेस में, दोनों में ही आपको तारीफ मिलने वाली है। विनम्रता बनाए रखें। लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: आज प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अधूरे काम पूरे करने का सही समय है। अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। लकी कलर आपका है हल्का।

0: का सहारा और नंबर है 7।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: आज रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। किसी जरूरी फैसले में अपने दिल और दिमाग दोनों के सुनिए। फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान दें। लकी कलर आज आपका है गुलाबी और नंबर है 8।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज ना धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी, जल्दबाजी से बचिए। दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज सीखने और कुछ नया करने का दिन है। पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। किसी अनुभव से अच्छी सीख मिल सकती है। लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज मेहनत का फल मिलने के योग है। काम में डिसिप्लिन बनाए रखें। परिवार का साथ आपको हिम्मत देगा। लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आपकी क्रिएटिव आइडिया से लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। खर्चों से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें। किसी पुरानी परेशानी का हल मिल सकता है। मन शांत रखें और हर काम मुस्कुराहट स्माइल के साथ करें। लकी कलर आपका है आसमानी और नंबर है 12।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: It's 9:45 और मस्ती मॉर्निंग में आप कनेक्टेड हो गए हैं। हमारे कुछ दोस्त अभी ऑफिस पहुंच गए होंगे और तो कुछ तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहे होंगे। वैसे जो लोग गड्डी से जा रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ रोड पर ही नहीं अपनी स्पीड पर भी नज़र रखा कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस, सेफ डिस्टेंस और सीट बेल्ट की आदत हर सफ़र को सुरक्षित बना देती है एंड आपकी सेफ्टी हमारे लिए मैटर करती है, तो अपना सही से ध्यान रखें। म्यूज़िक के साथ तो हम यही पर है कंपनी करने के लिए। इट्स Nilmani in your musty morning.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे करुणा जी नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि. सभी को नमस्कार. गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया. ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ. कल दोपहर MSM के एकमात्र सांसद जूली शोंगाओ ने विपक्ष नेता पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया. दूसरी ओर PMSD के आरगी जवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किमले को पियनो ने टूर डे फ्रांस के 6th चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी. फिर भी मॉरिशस की इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो श्योगोन के बीच आयोजित 6th चरण जीत दिया. इस शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया और एक बार फिर साइकिलिंग जगत में मॉरिशस का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन

0: किया। विदेशी स्तर पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले संभावित खतरों के बारे में जनता को पर्याप्त चेतावनी नहीं दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। बिलो रोड नोवेल डी कुवैत में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड श्री वीर सिंह जवाहर जो वीर सिंह से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी बेटी नेहा बामा के मकान बिलोलेन नोवेल डी कुवैत से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौदिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड आमोगी में 86 साल की 86 ईयर ओल्ड श्री बालकरण भरत जो सितवा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड आमोगी से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावाचिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रेलवे रोड सैन मिशेल बेलियागिवियासेश में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड श्रीमती इंदुमती भवन पैदाइश नाम विदेशी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे के बेटे धर्मदेव भवन के मकान रेलवे रोड सैन मिशेल बेलियागिवियासेश से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। गुटवायाल एनएस फ्लोहों में 72 साल की 72 ईयर ओल्ड श्रीमती निर्मला जदन पैदाइश नाम हरनोद जो लाता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान गुटवायाल एनएस फ्लोहों से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और रॉयल रोड बोबासम में 47 साल की 47 ईयर ओल्ड श्री वीरासोमी युवराज जो बॉब से जाने जाते थे और दिनेश परमेश वीरासोमी के बेटे थे की मृत्यु हो गई है। ये पहले एबोनी कोच फिनिक्स रहते थे। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल और दौत एलियन सनसो रॉयल रोड बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए शबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पास 1 PM। शोकग्रस्त एंड सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
2: This is 5 minutes. We're here. Welcome back to RMG Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे आंखों के बारे में बहुत सारे गाने हैं ना, आंखें तेरी आंखें प्यारी है अखियां मिलाऊं। उफ, अगर आपके दिल में भी कोई फरमाइश है किसी खास इंसान के लिए

0: या फिर बर्थडे है आपके जिगरे दोस्त या फिर पार्टनर का 5499-1294 पर आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आपके लिए नीलमणि हाजिर है चल 12 आपके ही मस्ती मॉर्निंग शो में। तो यही पर हमारे साथ कनेक्टेड रहना आरएमजी रेडियो मस्ती पर।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: अगर आप पूरा दिन बाहर रहने वाले हैं तो कंफर्ट को फैशन से ऊपर रखिए। ऐसे कपड़े और फुटवेयर पहनिए जिसमें आप दिन भर कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि कंफर्टेबल इंसान ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। तो टिप है वंस अगेन टू वेयर कम्फी येट फैशनेबल क्लोथ और जूते भी जो ब्रीदेबल है।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: जी हाँ, फ्राइडे मॉर्निंग है, पंपिंग गाने तो बनते हैं। अभी के लिए मौका लेकर आए हैं गेम के जरिए। ऑफ कोर्स आपको एक नहीं बल्कि 4 टिकट्स मिल सकते हैं और एक कूपन शाही थाली का फॉर द सर्व इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो पावर्ड है बाय SBI एंड LIC। क्वेश्चन सिंपल रखा है एज यूजुअल, एंड आपको बताना है जो गाना हमने अभी चलाया धत तेरी की उसका मेन सिंगर कौन है। 5499-1294 पर आपको बताना है सिंगर का नाम। गेम पावर है बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। गुड लक टू यू।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मस्ती मॉर्निंग में समा मस्त है क्योंकि गेम ऑन गोइंग हैंड सवाल पूछा गया था कि जो गाना हमने चलाया था उसका मेन सिंगर कौन था एंड द करेक्ट आंसर इज सनम पुरी और विनर हमारे बन गए हैं आप कौन

0: है। एंड यस, आप है उमा मोहनदिन जी जो कि घोंबा के रहने वाली है। कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मिला है एक नहीं बल्कि चार एंट्री टिकट्स उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल यानी कि कार्निवल का, और एक फूड कूपन शाही थाली का भी मिला है। यमी, एंजॉय योर डे एंड हैव फन एट द कार्निवल शॉपिंग फेस्टिवल, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग के साथ साथ होंगे इंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस भी होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, कैनवा शो, ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा और फूड फेस्टिवल। तो आप एंजॉय करना खूब, और जिनकी जीत नहीं हो पाई है नो वरीज, आपके लिए और भी मौके होंगे गेम खेलने के लिए। आप बस जुड़े रहना आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ। एंड आपको बता देते हैं कि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल ऑर्गेनाइज्ड है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड।
1: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits Les Vergers de la Bourdonnée à 122,95 € et les 320 ml de Vaseline Body à 219,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
2: On est tous Winners!
3: RM2
4: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: अजीत सिंह की आवाज में तेरा यार हूँ मैं. वैसे यार से याद आया कि यूनिवर्सिटी मंडे से शुरू हो गया है एंड जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, याद रखिए कि सिर्फ क्लासेस अटेंड करना ही काफ़ी नहीं होता है. नए लोगों से मिलिए, क्लब्स और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए. यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी देती है. सो फ्रेंड्स बनाइए, स्माइल कीजिए, आई कॉन्टैक्ट बनाइए और आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ यू स्टे कनेक्टेड क्योंकि आपके लिए मस्त गाने लाते रहेंगे 12 बजे तक ऑन यू आरएम2 रेडियो. You can find me in the club,
1: bottle full of bub, mama I got You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को विपक्ष नेता नियुक्त किया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के चेतन बाबूलाल ने विपक्ष नेता का दायित्व यथासंभव पूरा करने की बात कही। गौरतलब है कि जूले जोंगाओ द्वारा कल विपक्ष नेता पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद गणराज्य के राष्ट्रपति ने चेतन बाबूलाल की नियुक्ति की। एमएसएम के एकमात्र सांसद के त्यागपत्र को राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर पीएमएसडे के अद्रियन जिवाल ने ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मॉरिशस की महिला साइक्लिस्ट किम लेको पियनो ने टूर डे फ्रांस के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। दौड़ के समय यांत्रिक खराबी के कारण उन्हें अपनी साइकिल बदलनी पड़ी, फिर भी मॉरिशस की इस चैंपियन ने मोब्रिजों से टूनो स्योगोन के बीच आयोजित छठा चरण जीत लिया। विदेश में थाईलैंड के नोटबुरी प्रांत के एक स्कूल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में एक शिक्षक और छात्रों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हमलावर छात्र ने घटना के बाद आत्महत्या कर ली। रूस द्वारा गुरुवार रात यूक्रेनी शहरों पर किए गए हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए, 40 के करीब घायल हुए। और न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने मेटा यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में 567 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।

0: Port-Royal, Beau-Bassemer, Saint-Alice-Salle, qui 47-year-old, Sri Yuvraj Virasomi, Sri Yuvraj Virasomi, जो दिनेश और परमेश वीरासोमी के बेटे थे और जो बप से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है, ये एबोनिकोट्स फिनिक्स रहते थे। अर्थी जो हैं आज दिन के 1:30 बजे ला शापेल और दौत एलियनसन सोटवायाल बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छे लगते हो गाना क्योंकि आप सच में बड़े अच्छे लगते हो। वेलकम बैक मस्ती मॉर्निंग की तीसरे और आखिरी आओ में इट्स नर्मनी। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए थैंक यू दिल से। कुछ ही देर में उन्हें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस और टिप्स भी आपके लिए लाते रहेंगे गानों के बीचों बीच में। आप बस यहीं पर कनेक्टेड रहना, इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे गाने के बिगिनिंग में चक चक करता है सिंगर, लेकिन चक चक से तो घर को चकाचक बनाना पड़ता है, और ये होता है हॉरिबल टास्क फॉर सम पीपल, ना मुझसे पूछो यार। हाँ बताए, कभी कभी सफाई करते वक्त कमर दुखता है, पैर दुखता है, लेकिन क्या करें, घर को भी मैस में तो नहीं रख सकते। टिप है कि हर दिन दस मिनट के लिए घर को ऑर्गेनाइज करने में लगा दीजिए। छोटी सी सफाई और चीज़ों को उनकी जगह रखने की आदत घर को हमेशा फ्रेश और स्ट्रेस फ्री बना देती है।

0: फिर घर को चकचक बनाने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। तनु मणि को फॉलो कीजिए मोर टिप्स के लिए आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही। हर गाने के बीच में आपके लिए टिप्स लाते रहेंगे, आप बस कनेक्टेड रहना और आपके मैसेजेस भी जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो यही आरएमजू रेडियो मस्ती पर स्टे कनेक्टेड।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBI CC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBI CC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Mustang.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गानों के जरिए स्ट्रेस को भी चूमंतर करना चाहिए हर रोज. गुड मॉर्निंग अगर आप अभी भी कनेक्टेड हुए हो, अगर लेट से उठे हो, गुड न्यूज है क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट आपके लिए थोड़ा स्पेशल हो सकता है क्योंकि आज है ब्राह्म पाई डे. और जो स्टूडेंट्स अभी हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं, अगर बोर हो रहे हो घर पर रह के, तो क्यों ना आज किचन में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाए. आप ट्राई कर सकते हो कोई भी सिंपल एप्पल पाई की रेसिपी. अगर एप्पल आपको पसंद नहीं है तो आप मैंगो, मिक्स्ड बेरीज या फिर बनाना से भी अपना फेवरेट पाई बना सकते हो टू एंजॉय दिस डे. एंड बस उसके साथ अकंपनी बाय गरम गरम चाय या फिर कॉफ़ी, बस मज़ा ही कुछ और होगा. ऊपर से इट्स योर मस्टी मॉर्निंग शो, मस्त गाने ऑनगोइंग है आपके लिए, तो आप बस यही पर जुए रहिएगा आरएम2 रेडियो मस्ती पर.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: It's 11:37 और आप कनेक्टेड हो चुके हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ। घर से निकलने से पहले मौसम जरूर चेक कर लीजिएगा। आजकल हो रही है कभी कभार बारिश, लेकिन वेदिता बोल रही है कि आज मौसम है ऑसम, सो स्टाइलिश रहना ना भूलें। लेकिन वेदर के हिसाब से भी आउटफिट चूज करना और भी स्मार्ट फैशन होता है। 24/7 RM2 रेडियो आपके साथ है। तो नेक्स्ट गाना गोज आउट टू केशी जो हमारा साथ दे रही है। ललिता जी भी कनेक्टेड है, बोल रही है हर गाना रॉकिंग है। एना जना जी भी साथ दे रही है, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसे ही साथ देते रहिए। एंड नेक्स्ट सॉन्ग करते हैं आप सभी लोगों के नाम।
2: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपके साथ शेयर करना है कुछ। आपको बताया दोस्त, आज है एज्ड केयर एम्प्लॉई डे। आज का दिन उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो अपना समय, अपनी मेहनत और अपना प्यार हमारे बुजुर्गों की देखभाल में लगा देते हैं। चाहे वो नर्सेज हो, केयर गिवर्स हो, सपोर्ट स्टाफ हो या फिर वॉलंटियर्स, आप सभी का योगदान बहुत ही अनमोल होता है। एक बड़ा सा थैंक यू उन सभी हीरोज के नाम जो हर रोज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें अपनापन का एहसास दिलाते हैं। और हम सब के लिए भी एक छोटी सी याद है कि अपने घर के बुजुर्गों के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताएं। कभी कभी उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा सिर्फ आपका साथ और दो प्यार भरे शब्द होते हैं। तो वंस अगेन सभी एज्ड के एम्प्लॉइज को दिल से शुक्रिया। इसी के साथ मैंने मनीष साइन ऑफ करती हूँ, फिर मिलेंगे कल। तब तक स्टे सेफ और कीप स्माइलिंग विद योर RM2 रेडियो।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे गीता. नमस्कार आपको.
7: नमस्कार नीतुषा, सभी को हमारा नमस्कार. आज सुबह रिफॉर्म पार्टी ने एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पार्टी की सदस्य सिल्विया एडो ने सवाल उठाया कि वेरोनिक लेगोविंद अब भी सांसद के पद पर क्यों बनी हुई हैं. वेरोनिक लेगोविंद ने अपने घर कास्नो अयाल से कथित तौर पर गांजे के चार पौधे मिलने के बाद कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री तथा नुवो डेमोक्रेट की अध्यक्षा पद से इस्तीफा दे दिया था. पिछले शुक्रवार को उनके घर पर हुई तलाशी के बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था. सिल्विया एडो का कहना है कि मॉरिशस में राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मतदाता किसी सांसद को उसके कार्यकाल के दौरान वापस बुलाकर पद से हटा सके. देश में रक्त भंडार पर अभी भी दबाव बना हुआ है और खासकर निगेटिव ब्लड ग्रुप की तुरंत आवश्यकता है. ब्लड डोनर्स एसोसिएशन 30 अगस्त को बॉम्बू विलेज हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित करेगी. इसके बाद 4 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पूरे मॉरिशस में कई स्थानों पर रक्तदान का आयोजन किया जाएगा. ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन ने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की अपील की. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी. दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक की जाएगी. पोर्ट लुइस में जल की आपूर्ति का समय सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक निर्धारित किया गया है. इन नए प्रावधानों के तहत हर रोज पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की जाएगी. ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी और साथ ही 17 जून से प्लेन विलियम समुका तथा रिवियनवा के कुछ हिस्सों में लागू जल आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगी. और विदेश खबरों में, थाईलैंड के नोटनबरी प्रांत के एक स्कूल में आज हुई गोलीबारी में एक शिक्षक और छात्रों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं. हमलावर छात्र ने घटना के बाद आत्महत्या कर ली. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: शुक्रिया, मेहरबानी, करम जो आपने हमें देखा और सुन भी रहे हैं। दिन के 12:07 हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। एंड वेल, रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है हमारी तरह।
1: रेट्रो रिदम
0: फ्राइडे आफ्टरनून, 7 अगस्त की तारीख हो चुकी है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस दिन तो अच्छे से गुजर रहा है ना, और बेस्ट से बेस्ट बनाते हुए आपके मैसेजेस के साथ 5499129।

5899 पर इट्स योर रेट्रो रिदम ऑफ कोर्स. जिस सेगमेंट को आप बहुत ही पसंद करते हैं, एवरग्रीन सदाबहार गाने ओनली फॉर यू, आपके नाम आपके अपनों के लिए ऑन 5899 का अभी सुन रहे हैं. अभी फोन की घंटी बज रही है, ये गाना प्लीज, वो गाना प्लीज. इट्स माय प्लेजर कि आपके गाने आपकी फरमाइश को हम पूरी कर पाए. सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड एंड ऑफ कोर्स लंच टाइम है, शुभ आहार, बोन अपेटी.

0: बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द 90s 12:20 थैंक यू सो मच. और कई लोग इस समय काम पर हैं, लंच टाइम पर हैं एंड काफी लोग बाजार में हैं. सबको नमस्ते.
1: Radio Musti.
2: Paris pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point a lieu dans SBI Sissipay tous les jours, à partir du 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point a shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipay, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
1: RM2 Radio Musti.
0: तो जैसे कि हमने कहा, काफी लोग इस समय बाजार में हैं, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं. सबको बों कुहाश एंड नीतू की तरफ से सबको नमस्ते. तो चलिए, विश्वानी धूमन वाकवा में हैं और आप ही कहते हैं बाजार में हूँ और वाकवा के बाजार में. तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए शारदा इंदिरा, नीला जो है यूके में, साथ ही शोभा, गीता गजाधर, आपके सभी डियर वंस. ये है मधुमती फिल्म का सदाबहार गाना 5499-1294 पर आप ही भेजिए अपना नाम, अपनों के नाम.

रेट्रो रिदम। ऐसे गाने ना कभी पुराने होंगे नहीं, दैट्स फॉर श्योर। 12:26 ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जिसमें दिलीप कुमार नजर आए थे और विजयंती माला, और 11 गाने जिसमें सलील चौधरी ने कंपोज किए, और 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स। बाप रे बाप, जब तक कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आ ना जाए ये मूवी और रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ ना दे। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत गाने के लिए। रेखा का दिल मचल रहा है क्योंकि बस एक हफ्ता रह गया है एंड बैक टू स्कूल, लेकिन दैट्स लाइफ, आगे तो बढ़ना है ना। सो 5499294 पर रेखा ये गाना माइटी आपके लिए, आपके पूरे परिवार। लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू भाई विवेक सुकवरिया, एंड आप रहते हैं लाल माची, आपकी पत्नी कविता, बेटा विशेष, आपकी प्यारी सी 2 बेटियां, 7 बहनें, सब परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पापा जी को हैप्पी बर्थडे। लीना, आप रहती हैं प्लेन दे घोष, पापा का नाम ही भूल गए, हो फटाफट 5499-1294 पर भेज दीजिएगा उनका नाम, उनकी पत्नी की तरफ से यानी कि आपकी माँ की तरफ से, करण, राजीव, जिया, सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार। ललिता एंड जीतन फैमिली, गुड आफ्टरनून। साथ ही धनेश्वर जी, आप है पूरे परिवार के नाम, ऑफकोर्स फ्रॉम बॉम्बो, पत्नी सुनीता, देव, रेखा, निशा, रानी, मीना, ऋषि, साथ में तहान, पोतियां हंस, विबियाना, भाविका एंड होल दाविदस परिवार। और गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, दैट्स व्हाई कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड।

0: 102 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: क्या बात है, ऐसे प्यारी प्यारी गानों की फरमाइश आप लोग कर रहे हैं. दैट वाज अनामिका स्पेशली आपके लिए. रीटा मिलानो से एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये जो गाना है ना हम सब के लिए, हमारी जिंदगी कैसे हम लोग बिताते हैं, कैसे जीते हैं. तो बस आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन छोड़ कर जाएंगे बहुत सारी यादें. चलिए उन यादों में शायद हम भी शामिल हो, और हमारी यादों में आप तो डेफिनेटली शामिल हो. थैंक यू शीला करुणा मीठा मोताबा से. गुड आफ्टरनून, कैसे है शाम एंड डिविशन फैमिली. हाँ सुसाइड, ओके एंजॉय, क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट गाना आपके नाम वैकेशन पर है, और यहाँ पर है कसिदोस फैमिली. और क्या गाना है चाचा धीरज के नाम तुम मिले प्यार से. ओहो यू लव दिस सॉन्ग. चलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर में. अभी के लिए मुकेश जी की आवाज़ में ये वाला गाना आपके नाम.

0: Welcome to Radio Musti.
1: 10 roupies, 50 roupies, 100 roupies, des 100 roupies. Oui, ou fin bien tendé. La Foifouille présente tous ce Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park. Ban millier lotique à prix foufou. Cosmétiques, meubles, textiles et plus encore, et n'indice tout. Parata l'occasion là. Prends famille, voisins, camarades, vin fin les tout. Nous pouvons attendre. La Foifouille Yacht Sales du 1er au 9 août à Flak Retail Park.
2: C'est la fête à la maison. La Foifouille.
0: RM2 Radio Musti.
3: बारह बजकर 54 मिनट हो रही है, एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। यलेश एंड शाम फैमिली, गुड आफ्टरनून माय डियर। ये गाना आपके नाम एंड कस्काविल से हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं? बेटा है कुशल, बेटी है बहू है कोमल, ख्यानाश और कृषय स्कूल हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं और गाना है छुपाना नहीं आता, आई थिंक यही गाना है। तो चलिए बस थोड़ी देर में साथ दीजिएगा।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: दिन के एक बजा है।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे भी धीमा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह रिफॉर्म पार्टी ने बेन केनेस पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी की सदस्य सिल्विया एडवर्ड ने वेरोनिक ले गोविन के सांसद पद पर बने रहने पर सवाल उठाया है। काज नोयाल स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर गांजे के चार पौधे मिलने के बाद वेरोनिक ले गोविन ने जूनियर मिनिस्टर के पद के साथ साथ नुवो डेमोक्रेट के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले शुक्रवार को तलाशी अभियान के बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिल्विया एडवा के अनुसार मॉरिशस में मतदाताओं को किसी सांसद को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए राइट टू रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। वकील शफिक चतर के अनुसार कई घंटों की पूछताछ के बाद कल वेरोनिक ले गोविन को रोज हिल स्थित आजसू के कार्यालय से जाने की अनुमति दे दी गई। इस स्तर पर सांसद के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में पूछताछ की, जिसमें कैनाबिस के निशान पाए जाने का संदेह है। उनसे रेनियन की उनकी यात्राओं के बारे में भी पूछताछ की गई। आजसू और रेनियन की पुलिस संयुक्त रूप से रेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी मामले की जांच कर रही है। इकोलॉजिस्ट डेविड सुवाज ने वेटलैंड्स बिल में संशोधन की मांग की है। उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में एक कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका ये भी दावा है कि 2009 के ESA स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। डेविड सुवाज ने पाठ में प्रस्तावित गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है और उनका मानना है कि नागरिकों की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है। खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बॉम्बू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे द्वीप में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीवानंद हुसैन ने आम जनता से रक्तदान करने की अपील की है। और विदेश में थाईलैंड में एक किशोर लड़के द्वारा कथित तौर पर अपने दादा दादी और स्कूल के शिक्षकों को गोली मारने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। संदिग्ध हमलावर जो 14 वर्षीय छात्र हैं वो भी मृत पाया गया है। बताया जा रहा है कि उस लड़के ने राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर पर अपने दादा दादी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो अपने स्कूल गया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो।

0: देखिए ना, मैं भी आ गई आ गई।
1: रेट्रो रिदम।
0: वैसे कहीं गई तो नहीं थी, आप ही के पास हूँ और आपके साथ हूँ टिल 2 PM। घड़ी मिलाते चलिए 1:06। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे मैसेजेस के लिए, प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए थैंक यू। तो चलिए, गाने तो बहुत सारे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई हुई है। एंड नेक्स्ट गाना जो है हम चलाते हैं आपके लिए, कासिडस फैमिली। यहाँ पर हैं 3 बेटियाँ, नेहा, नील, साथ में है रिश्ता, रवि के लिए छोटी प्रिंसेस है नातिन रियांशी के नाम, और श्रेया के लिए पति चंदन के नाम, खास आपके लिए अमृता जी। नमस्ते नीचू, होप यू आर डूइंग वेल। यस, बिल्कुल ठीक हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का फीमेल वर्जन सुनना चाहते हैं, कौन है भाई? मैं देखूँ तो कौन इस गीत की फरमाइश कर रही है? ओ प्रीति, फीमेल वर्जन, हाँ ये तो मुझे पता है, किशोर कुमार का गाया हुआ है। मैं ढूंढती हूँ आपके लिए, आपके पूरे परिवार के नाम, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए भी चलाते हैं वीना एंड संभू परिवार बासकोन से, और निर्मला है फ्रॉम फ्लैक, आपके पति, आपके बेटे, आपके पूरे परिवार, और विश करेंगे हैप्पी 12th बर्थडे टू यू प्रिंसेस येना ग्रेसी ला शामोत, और आप रहते हैं घोंबे। विशेज एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ईशान, दिशा, रविश, प्रीशा, लवशा, सब भी परिवार, एंड ऑफकोर्स रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

अमीना, थैंक यू सो मच. यहाँ पर आपने गाने की फरमाइश की थी प्रीति, नो वरीज, वो जो गाना है हमको मिल गया है और लता जी की आवाज़ में एक श्रद्धांजलि है टू द ग्रेट ऑफ कोर्स किशोर कुमार. थोड़ी देर में हम चलाएंगे, तब तक अगला गाना आपके लिए मिस्टर बाबू अनतवा बासा कैथ्रो बोन से पूरे परिवार के नाम.

तब वो यानी कि लोगों को मूवी को बंद करनी हो यानी कि करनी पड़ी क्योंकि लोग इतने पटाखे बजा रहे थे कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था. दैट्स सो स्वीट. और ये जो यादें हैं इन गानों के जरिए वो भी ताज़ी हो जाती हैं, है ना. थैंक यू सो मच. सो रफी साहब की आवाज़ में ये गाना आपके लिए, रेशमा राम की सुन माय डियर फ्रेंड, गाना आपके नाम, आपके पूरे परिवार के लिए भी.

0: दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपना देश तो अपना होता है ना?
1: Retro Rhythm RM2

चलिए बता देते हैं ये गाना आपके लिए लवली वाइफ मालू फ्रेंड्स हैं सुरेखा वन अर्थ आरती एंड आपके नाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच भाभी हम आपको भी नमस्ते और चाची उषा कहती हैं फ्रॉम मामोगी तेरे घर के सामने क्या करेंगे बैठकर गाना सुनेंगे बस एंजॉय कीजिए

व्हाट अ लवली गाना, सोलफुल सॉन्ग लता जी का गाया हुआ ये जीवन है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते, कितने सारे फ्लेवर्स लाइफ जो है हमें सिखा जाती है ना, तो बस अपनाते चले, अपनों को माफ़ करते चले। अगर किसी से गुस्सा भी है, यू नेवर नो, जब कोई चला जाता है तब उनकी यादें सताती हैं, है ना। ये है दो जासूस, एक बार फिर लता जी, दिस टाइम शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। Do keep on sending me your messages on 549912947999299. Priti, gana aapko acha laga? Thank you so much. जितने भी लोग काम पर हैं, सबको बों को आज सफर में होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली। हाँ, एक छोटा सा मैसेज अगर आप बैठे हुए हो 549912947 पर।

0: मेट्रो रिदम।
1: क्या बात है भाई, तेरे घर के सामने दुनिया बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, चलिए आपकी दुनिया आबाद रहे। हेलो मॉरिशस, हेलो मिस्टर डेव, आप ऑफ पेरिस से आर, आप कहते हैं कि आज आपके फ्रेंड, आपके कजिन ब्रदर सुभाष जो रहते हैं कंगोमा और स्विट्जरलैंड में रहते हैं, कोंगोमा से है लेकिन स्विट्जरलैंड में रहते हैं, आज उनका बर्थडे है, सो गॉड ब्लेस हिम ऑन बिहाफ ऑफ जो मानी कोंगोमा से एंड आपकी तरफ से, आपके पूरे परिवार की तरफ से, और जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइक अनायशा 18 ईयर्स ऑलरेडी, तनवीर, तेजल, रायना, रायाना, निष्ठा, तरश, बानिशा, वर्षा, पुपा है, बिनेश, नवीन, दादी कमला, गंगा, बिसुन परिवार एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती परिवार की तरफ से आप सबको

ऐसे भी लोग होते हैं, बंद कराते हैं, बाहर बंद कराते हैं और बस हवा के झोंके के साथ चले उड़ जाते हैं। टाइम टू से बाय बाय 154 और चलते चलते कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे टू लवली नेहा, प्यार से आलिया पुपे, नानी गुड़िया, नाना लवली नेहा के नाम। और प्रिया की तरफ से आप नीरज हैं, भाई नील, निहल, श्रेया, और बस आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्लाइंग कलर्स के साथ आपने अपने एग्जाम्स पास किए हैं, सो बस आगे बढ़ते चले, अच्छा इंसान बनते चलो और बड़े इंसान भी बनते चलो। सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार। हमारे बाद परी के साथ बॉम्बे टॉकीज, कैच यू ऑन मंडे मॉर्निंग सुबह 5 से 7 बजे के बीच इन राइज एंड शाइन। हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।

0: on to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: 2 baje hai. सुनते हैं एक बार फिर से देश विदेश की खबरें. आपसे भी धीमा नमस्कार.
7: नमस्कार नीतूषा. सभी को नमस्कार. इकोलॉजिस्ट दाविद सुभाष ने वेटलैंड्स बिल में संशोधन की मांग की है. उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा. उनका ये भी दावा है कि 2009 में ईएसई स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है. दाविद सुभाष ने पाठ में प्रस्तावित गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है और उनका मानना है कि नागरिकों की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है. इस शुक्रवार बनकेहरे सिपॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की. मादक पदार्थों की तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे. होशीबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की. खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है. ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बोंबू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है. विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे द्वीप में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है. ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन ने आम जनता से रक्तदान करने की अपील की है. और विदेश में न्यू मेक्सिको अमेरिका में एक न्यायाधीश ने मेटा को जनता को उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने के लिए $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है. बाल सुरक्षा को लेकर कंपनी के खिलाफ अब ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.

0: और चलिए दोस्तों यहां पर हम आ गए हैं आपका साथ निभाने राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. यस इट्स फ्राइडे, इट्स 7th of August एंड आई डू होप इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे आपके लिए. 2:05 और अभी के लिए लेकर आए हैं बी टाउन की अपडेट्स. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक आपके लिए बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट गॉसिप्स हम लेकर आए हैं. साथ ही कुछ गेम और कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी होने वाले हैं. अभी शुरुआत में ही आपके साथ हम एक गेम खेलेंगे जहां पर अगर आप हमें सही जवाब देते हैं, हमारे लकी विनर बनते हैं, तो आप जीत सकते हैं 4 entry tickets एंड 1 food coupon फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. इसे जीतने के लिए आपका सवाल वेरी सिंपल. आप यहाँ पर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, सो आपको हमें बताना है कि बॉलीवुड में कौन से वो एक्टर है जिन्हें मिला है खिताब ऑफ किंग खान. किंग खान ऑफ बॉलीवुड, ये कौन से एक्टर को खिताब मिला है, कौन जाना जाता है एज किंग खान ऑफ बॉलीवुड. आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट.
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

ऑरवेल आपसे पूछा था सवाल, कौन है वो एक्टर जो जाने जाते हैं एज किंग खान ऑफ बॉलीवुड, एंड द राइट आंसर इज वन एंड ओनली शाहरुख खान। यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, कुछ लोग

ड्राइव करते हुए भी जवाब भेज रहे हैं, अरे ड्राइव करे आराम से और सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमें यहां पर सही जवाब दिए। सो यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद। रुचिका शर्मा, आप है ट्रियोली से, आप बनती है लकी विनर, कांग्रेचुलेशंस। सो वेल रुचिका, खेला आपने एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंस लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक एट एसबीआई सीसी पाई सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। सो यू कैन एंजॉय लेट नाइट शॉपिंग, साथ ही आप एंजॉय कर पाएंगे इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो और साथ ही लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन। स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, कैनमा के शो होंगे, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड अ फूड फेस्टिवल एंड ऑल दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। सो वेल, आपको आना होगा एमबीसी रुचिका अपने आईडी के साथ टू कलेक्ट योर गिफ्ट और आप सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक आ सकती है। एंड जब आप एमबीसी आती है डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जीतने के मौके और भी मिलेंगे और ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स मी परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: एंड वेल फ्रेंड्स 2:32 और कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस रानी स्वर्णकर की फ्राइडे को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए दोनों को एक साथ देखकर उनके जो फैंस हैं और जो मीडिया है उनका जो ध्यान है वो उनकी तरफ खिंच गया और वैसे इसमें क्या है खास तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे जो एक्टर है यानी कि गोविंदा वो अक्सर अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे लेकर सुर्खियों में रहते हैं वहीं एक्ट्रेस रानी स्वर्णकर भी बीते कुछ दिनों से अपनी फिल्म के चलते चर्चाओं में चल रही है और अब दोनों एक्टर्स को एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया आपको बता दें कि गोविंदा ने स्मार्ट कैजुअल ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था उन्होंने ब्लैक जैकेट और उसके साथ व्हाइट ओपन कॉलर शर्ट पहनी थी जिसे ट्राउजर्स और डार्क सनग्लासेस के साथ उन्होंने स्टाइल किया था वहीं रानी की अगर हम ड्रेसिंग स्टाइल की बात करें तो काफ़ी एलिगेंट व्हाइट आउटफिट में वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी और ये दोनों जो स्टार्स हैं वो साथ में नज़र क्यों आए क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म रूपा का प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते वो काफ़ी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का ध्यान उनकी तरफ इसलिए खींचा कि भाई ये दोनों एक साथ क्यों नजर आ रहे हैं सो वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गोविंदा अपने ही कमबैक कर रहे हैं और वो ये फिल्म खुद बना रहे हैं और ये है उनकी नेक्स्ट फिल्म रूपा जिसमें वो अपना कमबैक करेंगे और जिनके साथ नजर आने वाली है ये खूबसूरत एक्ट्रेस रानी और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बी टाउन की और भी खबरें हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक
1: रेडियो मस्ती
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा एक जरूरत नहीं पड़ी काहे की हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली डिजाइनर लहंगा लच्छा साड़ी जोधपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में हलकोरी फैशन रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने फोन नंबर 5799-3782 हलकोरी फैशन परंपरा एलिगेंस और कारीते
1: RM2 रेडियो

वेल बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती 24/7 आपके साथ आपका अपना रेडियो स्टेशन अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM

0: RM2
1: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited. RMT.

एग्जैक्टली दोस्तों, सुनते रहो और हमारे साथ गुनगुनाते रहो। यह है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ और लेकर आई हूं योर बॉम्बे टॉकीज़। डेविस एंड लाल

से हमारा साथ दे रहे हैं सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आपके नाम यलेश इस वक्त आप भी हमें सुन रहे हैं एंड कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ शो को एंजॉय कर रही हैं और साथ ही यहां पर एक प्यारा सा गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर भी और उसके बाद म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती ये है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज और वेल कुछ और खबरें कुछ और सॉन्ग्स कर रहे हैं आपका इंतजार स्टे वेल ट्यून्ड

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इकोलॉजिस्ट दाविद सुभाष ने वेटलैंड्स बिल में संशोधन की मांग की है। उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में एक कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका ये भी दावा है कि 2009 में ईएसए स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज बेन के हेनेसीबॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। मादक पदार्थों की तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। वोशिबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बॉम्बू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे देश में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आम जनता से रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और तेहरान अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अमरीका ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अस्थायी समझौते के करीब पहुंच रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 3 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स, कोई मिल गया, हमें तो मिल गए हैं आप, और जब आप मिल गए हैं तो हमें और कोई क्या ही चीज चाहिए, बस आपका प्यार, आपका साथ, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो फ्राइडे आफ्टरनून, आहा, द ब्यूटीफुल फ्राइडे आफ्टरनून, जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. फ्राइडे होता है खास एंड स्पेशल, बिकॉज फ्राइडे होता है एक एहसास कि अब कुछ आराम के पल हम भी एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक वीक अब आपको मिलने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे पल जहां पर आप घूम फिर तो सकती हैं. You can make some beautiful memories as well. दोस्तों के साथ शायद जो pending plans थे अब वो complete हो सकते हैं. बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो भी कुछ plans बनाए बैठे हैं. वैसे अभी तो आप enjoy कर रहे हैं अपना जो छुट्टियों का time है वो, और उसी के साथ अब मम्मी पापा का साथ भी मिल जाएगा on weekends, and of course your cousins, your friends, everyone, आप कुछ खास और special जरूर कर सकते हैं. सभी के लिए तो आपके इस Friday afternoon को हम बना रहे हैं खास with some Bollywood updates. मैं हूं परी आपके साथ, it's your Bombay Talkies, साथ रहेगा आपका और मेरा on Radio Masti till 4 PM.
4: Play karo, smile karo, Bollywood ke saath chill karo, dil se Bollywood, Radio Masti.

और चलिए दोस्तों, एक ही तो लाइफ है और इसे खुलकर जीना तो बनता है। और जिंदगी को जब आप लव करते हैं तो फिर एक बैकग्राउंड स्कोर जो है वो आपके बैकग्राउंड में चलते ही रहता है। अभी के लिए तो हम भी लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने, शायद इसमें से कोई गाना ऐसा हो जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और कभी कभार लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, बस एक अच्छा गाना चल जाए और मूड सेट हो ही जाता है। वैसे आज तो है फ्राइडे, सो एक और केक आपके लिए जहां पर

आप एंजॉय करने वाली हैं वीकेंड को सो मूड में थोड़ा सा आप बदलाव ला सकते हैं बॉस ने कुछ कह दिया दोस्तों के साथ कुछ हो गया कलीग्स के साथ कुछ कहा सुनी हो गई सब भूल जाइए बिकॉज एक ही तो लाइफ है दोस्तों लिव इट खुलकर और अभी के लिए तो म्यूजिकल डोज हम आप तक पहुंचा रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती मैं हूं परी आपके साथ 12 PM एंड टू गेट यू इन योर फ्राइडे मूड वी हैव दिस वन

0: disco never dies.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: एंड वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 3:36 पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद, जिन्होंने इमरान हाशमी की 2007 की फिल्म आवारापन का सुपरहिट गाना तेरा मेरा रिश्ता गाया था, एक बार फिर चर्चाओं में है। आपको बताते हैं क्या है फुल स्टोरी। इमरान हाशमी एक बार फिर आवारापन 2 में नजर आने वाले हैं और पहली फिल्म का गाना तेरा मेरा रिश्ता काफी पॉपुलर हुआ था। अब खबर सामने आ रही है कि आवारापन 2 में मेकर्स मुस्तफा जाहिद से तेरा मेरा रिश्ता गाने का एक नया वर्जन रिकॉर्ड कराने की बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा जाहिद की प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और विशेष भट्ट से बातें चल रही हैं और अगर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो इस हफ्ते दुबई में गाने की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। हालांकि ये गाना जो है वो फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये गाना बनेगा ज़रूर। और ये तो हम जानते हैं कि ये इतना पॉपुलर गाना था तेरा मेरा रिश्ता, और अगर एक बार फिर ये फैंस को सुनने को मिलेगा तो जो व्यूअर्स हैं वो तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस गाने को सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिलहाल दोनों तरफ से फाइनल मंजूरी का इंतजार हो रहा है। सो अभी के लिए हम बता दें, अगर आप भी इस गाने के फैन हैं तो मुस्तफा जाहिद की आवाज़ में इस गाने को आप एक बार फिर सुन सकते हैं और ये होने वाला है एक डिफरेंट अंदाज में, लेकिन ऑफकोर्स द सेम मैजिक कंटिन्यूज। अभी के लिए तो म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती, लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज़। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM।

एंड चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय. मेरे बाद आ रही है गिनी शाले करियो फ्राइडे मैशअप. तब तक के लिए साथ दीजिए ऑन रेडियो मस्ती. थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. स्टे वेल ट्यून्ड.

0: to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
5: Check your time, it's a sharp 4 PM. आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिरीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार. वर्ष 2026-2027 के बजट में लुमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 साल की अवधि में 124 मिलियन रुपए दिए गए हैं. आगंतुकों के स्वागत के लिए थोशनी में कई संरचनाओं के निर्माण के साथ इसका पहला चरण शुरू होने की योजना है. यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होने वाले ये काम लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद है. कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया और सभी संबंधित साझेदारों ने स्थल का दौरा किया. मॉरिशस सोसाइटी ऑफ वर्फर्स ने हाल ही में रॉयल्टी के भुगतान को लेकर कलाकारों को आश्वस्त किया है और कहा है कि ये सामान्य वार्षिक वितरण नहीं है बल्कि पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान एमबीसी के प्रसारण से जुड़ा एक असाधारण भुगतान है. किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए ये संस्था कॉपीराइट के संग्रह और वितरण के तौर तरीकों पर फिर से बात कर रही है. आज जुबेन के हेनेसीपॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की. मादक पदार्थों की तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे. और विदेश में कोरिया में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने के कारण देश भर में जंगल की आग भड़क रही है. लंबे समय से जारी गर्मी और सूखे के कारण वहां के जंगल अत्यधिक सूखे और आग के प्रति संवेदनशील हो गए हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: just about the music. It's about the feeling.
1: Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musti, in the mix.
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.

0: just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: That was such a beautiful track to kickstart this beautiful and lovely Friday, your Friday mashup with me here, Ganesha, on RNT Radio Masi. So, hi, my dear and lovely listeners, wishing all of you a very good afternoon. Namaskar ji aur Ganesha ka pranam. Friday ka mood on, weekend ka countdown start ho chuka hai. So, aapka saath to hum dene aa gaye hain Radio Masi here ke is Friday mashup mein, yani ki non-stop Bollywood beats, chotbuster hits, full-on energy ke saath. Volume badha do, stress ko ghata do, meri jaan, kyunki Friday se feel... करने के लिए नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन RN2 रेडियो मस्ती. एंड आई रियली होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट डे. आज है फ्राइडे 7th of August 2026. टू ऑल दोस जो जुड़ चुके हैं हमारे फ्राइडे मैशअप के साथ, बड़े प्यार से आपका स्वागत है जी. सो वी गोना टेक यू विद आउट टू बॉलीवुड की दुनिया में विद सम बॉलीवुड के गाने एंड एज वेल योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ, योर ट्रैफिक अपडेट्स, योर फैशन मंत्रा ऑफ कोर्स, और भी बहुत कुछ होने वाला है. So stay tuned and stay connected. थोड़ी देर में हम kickstart करने वाले हैं एक गेम जहां पे you can win 4 entry tickets and 1 food coupon for this lovely show जो होने वाला है, यानी कि राजस्थान वर्क्स लिमिटेड ने जो ऑर्गेनाइज किया है नमरोशा शॉपिंग कार्निवल जो होने वाला है from the 12th and going to end on the 16th of August at SVICCR Paya. तो इतना सब कुछ only in your Friday mashup. So here we go, stay tuned and stay connected. This one goes out to you.
1: RM2 Radio Musti.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: बिल्कुल जी, दैट्स योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन मॉरिशस. 4 बज के 26 मिनट्स हो चुके हैं. इसमें निशांत मैं क्या नागना भी है रात के 7 बजे तक आपका साथ देने के लिए. अभी थोड़ी देर पहले आई जस्ट टोल्ड यू दैट वी हैव अ गेम टू किक स्टार्ट विद यू टुडे इन दिस फ्राइडे मैशअप, जहां पे यू कैन ट्राई योर लक एंड बी माय लकी विनर. जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई हैव गॉट

बिल्कुल जी, यू जस्ट हैव टू टेल मी ये किस चीज का साउंड है. यस, ऑन 5499-1294 पर पहचानिए और सही जवाब भेजिए ऑन दिस नंबर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ.

0: तो चलिए जी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: बिल्कुल जी, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप डूब जाएं, ये डूब जाएं हमारे प्यार में। यू आर लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। चेक योर टाइम, इज ऑलरेडी 4:36।
1: आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: Le gaspillage d'énergie nous concerne tous. Afin de préserver la stabilité de notre réseau électrique, certaines activités non essentielles alimentées par le réseau sont désormais interdites. Sont notamment concernés l'éclairage extérieur ainsi que décoratif non essentiel à la sécurité publique, l'illumination des façades à des fins esthétiques, les panneaux publicitaires lumineux, les fontaines décoratives ainsi que l'utilisation inefficace des

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: स्पोर्ट्स गुरु ऑल सेट विद हिज स्पोर्ट्स न्यूज इन द स्टूडियो. गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद.
4: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. वैसे अभी कुछ समय पहले आप वो गाना चला रहे थे कि सबसे बड़ा रुपया
3: पैसा पैसा फेंक तमाशा देख
4: तमाशा देख. लेकिन बहुत लोग मेहनत करके जब पैसे कमाते हैं तो उस पैसे का बहुत क्या कहते हैं
3: वैल्यू
4: होता
3: है. होती है.
4: अब जैसे यही ले लो, हमारे जो कॉमनवेल्थ के में भाग लेने गए एथलीट जो थे जिन्होंने मेडल जीता, उनको आज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर से कैश प्राइज दिए गए. रेमी फेई जिसको गोल्ड मेडल मिला, ही गॉट 300,000 रुपीज. नोएमी अल्फोंस जिसने दो सिल्वर मेडल जीते, एक सिल्वर मेडल के लिए 200,000 यानी 200,000 रुपीज, उसको डबल करो हो जाता है 400,000 यानी 400,000 रुपीज. और मैं वैक्लेया जिसको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, उसको 100,000 रुपीज मिला. सो युवा एवं खेल मंत्रालय ने आज इनको ये फाइनेंशियल कैश प्राइज दिए. और जुडोका रेमी फेई जिसने 90 kg वाले कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, उसका जो कोच है अलैं लुमो, उसको 120,000 रुपये दिए गए. नोएमी अल्फोंस के कोच जॉन मारी बागेराची को 80,000 और मैवेक क्लेयर को 100,000 दिया गया. और उसके जो दो कोच रहे जोजॉन लेबों और रिशार सनी को 20,000 रुपये दिए गए. टू वैसे देखा जाए तो वो गोल्ड मेडल बहुत ही कीमती है, बस उनके एफर्ट को सल्यूट करने के लिए ये एक टोकन है. पर दैट्स फॉर शो कि इससे काफी एंकरेज होंगे. और रेमी फेई ने बताया था कि वो विदेश में कोचिंग वहां पर ट्रेन करता है और मॉरिशस की सरकार की ओर से काफी सहायता उसको मिल रही है. इधर साइकिलिंग में भी कल कमाल हो गया, सभी लोगों ने देखा और सोशल मीडिया फट गया उस न्यूज के साथ रिगार्डिंग द विन टू डे फ्रांस दम में. और ऐसे में देखा जाए तो रोइनियन आइलैंड में भी बहुत कुछ हो रहा है. किम्बर्ली लेकू जो कर पाई वो पिछले साल जो किया था, सो दैट वाज नॉट समथिंग लाइक, ऐसे ही आ गया. एक बार फिर एक स्टेज जीतकर उसने साबित कर दिखाया कि एट वर्ल्ड लेवल शी इज अमंग द बेस्ट. और आज इधर रोइनियन टापू में टू दे लील रेनियो में मॉरिशस का क्रिस्टियन आर्डी contre la montre individuelle, यानी इसमें जीत हुई उसकी. और टाइम ट्रायल इस प्रकार वो अब येलो जर्सी से केवल 4 सेकंड पीछे हैं. ट्रिस्टन आर्डी जो टीम मॉरिस एमसीबी के लिए वहां पर भाग ले रहा है. सो गुड डेज फॉर मॉरिशन एथलीट्स और काफी अच्छे अच्छे नतीजे ला रहे हैं. मैनचेस्टर सिटी खरीद बेचना नहीं चाहता. रोड्रिगो बार्सिलोना ने 38.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बिड भेजा, लेकिन सिटी ने कहा ना बाबा नहीं देंगे. उसने कहा कि 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा दोगे तब रोड्रिगो बेचेंगे. मतलब बेचना चाहते हैं सही दाम मिलने पर. काफी हलचल है क्योंकि अभी बस 18-20 दिन रह चुके हैं ट्रांसफर बाजार बंद होने में. फिर कुछ अन्य खबरें, काफी गुमारेज वो आर्सेनल में जाना चाहता है और डील लगभग हो रही है. एथलेटिक

0: को मैड्रिड वो रोमेरो को स्पेन के स्पर्स के कप्तान रोमेरो को साइन करना चाहता है. कुछ मैच भी खेले जाएंगे आज और कल रिगार्डिंग द इंग्लिश लीग कप. फर्स्ट राउंड वुल्व्स का मुकाबला पोर्ट वेल से, फिर विकुम स्टेविनेज, मिडल्सब्रो रेक्साम. ये काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा, मिडल्सब्रो रेक्साम वाला मैच. फ्रेंडलीज भी आज निर्धारित हैं. एक फ्रेंडली मैच समाप्त भी हो गया, अल्मेरिया ने कोर्डोबा को 4-0 से हराया, सेंटांडर ने जिरों को 4-1 से हराया, 4-1 से. और मेलबोर्न सिटी का मुकाबला पालेमो से होगा, फुलहम क्रिस्टल पैलेस. और कल भी काफ़ी मैच खेले जाएंगे. कल के फिक्स्चर्स में, मेन फिक्स्चर्स में अगर देखा जाए तो स्कॉटिश प्रीमियर लीग प्रीमियरशिप है, इंग्लिश लीग कप है जिसमें फर्स्ट डिवीजन यानी प्रीमियर लीग काफ़ी टीमें इसमें आएंगी. और साथ काफ़ी मैच है, वेस्ट हैम पोर्टसमूथ इसमें तो अब फर्स्ट टीमें आने लगी हैं. UEFA Women's Champions League क्वालिफाइंग भी कल के लिए रखा गया है. और क्रिकेट, भारत और श्रीलंका के बीच एक वार्म अप मैच चल रहा है. इस 15 अगस्त को तो फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू होगा. तो इस टेस्ट, इस वार्म अप मैच में भारतीय टीम अभी दूसरी इनिंग्स में यानी बैटिंग नहीं कर रही है, बैटिंग करेगी बाद में. लेकिन श्रीलंका 11 काफी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं इंडियन सीमर्स को. ओपनिंग डे ऑफ टू गेम 363/8 और कल दूसरे दिन का खेल होगा. तो 7 बैटर्स पास 30, 3 मेंटेन्ड 50. तो देखें आगे क्या होगा. कल भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे 2 विकेट लेने के बाद. सो इट्स अ बिग वीकेंड. वीकेंड में काफ़ी जगहों में काफ़ी प्रतियोगिताएं होंगी. आज कंफर्म हुआ कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पितों टूर्नामेंट लगने वाली है 16 अगस्त को, फिर फुटबॉल को लें तो रोशनो स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट इस सैटरडे और संडे के लिए जारी हैं. रीजनल न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हम लोग हैं. और आज भूलिएगा नहीं, आप लोग MBC3 भोजपुरी चैनल पर देख पाएंगे खेल खिलाड़ी, जिसमें आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम देंगे. दैट्स फॉर सर जुगाड़ी शंकर, जिनको अभी नया कोच बना गया है अंडर-20 फुटबॉल टीम. और ये इंटरव्यू हैं. और साथ साथ में ब्लू बे अरेना में जो वहाँ पर गेम्स लगे थे उस पर भी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं. साथ साथ में रेमी फेये, जो उसने गोल्ड मेडल जीता था वो फाइट, वो भी पूरा दिखाएंगे आपको आज MBC3 भोजपुरी चैनल पर 8 बजे. सो हैव ए वंडरफुल वीकेंड अहेड. आई विल कैच यू वेरी सून. टेक केयर.
1: थैंक यू सो मच. एंड यू टू एंजॉय योर वीकेंड.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lanso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pour 295 roupies, grand.

बिल्कुल जी, सही जवाब है ट्रेन. यस, दैट वाज अ, दिस इज अ साउंड ऑफ अ ट्रेन, और चलती ट्रेन, चलती रेलगाड़ी की आवाज है. सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन आज पर द रूल आपको तो पता है, ओनली वन लकी विनर. सो आज का लकी विनर है लक्ष्मण देवी रानी, जो रहते हैं पीटरबोफ, लालोगा, सेंट पियर में. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू.

तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 5:17 हो चुके हैं। द गुड म्यूजिक इज स्टिल ऑन आर एंड टू रेडियो मस्ती ही। हाँ जी, ये है आपका फ्राइडे जो है मैशअप, एंड आई हैव गॉट यू द बेस्ट म्यूजिक। तो चलिए, टोल्ड दोस हु आर ड्राइविंग, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू।

For those who are driving, drive carefully to all those जो बड़े आराम से बैठे हैं घर पे और चाय का प्याला या कॉफी पी रहे हैं. अरे मेरी जान कॉफी की बात मत कर, यानी खुद कॉफी की बात करते हैं और खुद तड़पते हैं कॉफी के लिए. तो चलिए एक घूंट हमारे नाम एंथम की पर एंजॉय द गुड म्यूजिक. वैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर दिस फ्राइडे आफ्टरनून, कॉफी एंड म्यूजिक एंड रेडियो मस्ती. तो चलिए जी फिलहाल के लिए ऑन 5491294 पर लेट्स चेक इट आउट किसने किसको याद किया है. और ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे बेबी अरशद के लिए. और किसी ने बोला आपको You have no idea how much he loves you. Oh my God, baby Rebecca, that's so sweet of you. And Lalita Jitan, ये अगला गाना आपके लिए, student के लिए, और Miss Lalita Jitan की तरफ से सभी बच्चों के नाम. And to all those जो अभी drive कर रहे हैं, हाँ जी, ये अगला गाना आपके लिए. Drivers, conductors, आप गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, metro में बैठे हो, taxi में बैठे हो, truck में बैठे हो, कहीं से भी मेरी जान, ये अगला गाना आपके नाम.

I really hope that you guys are really loving this beautiful गानों का selection. So, जी हाँ, weekend officially शुरू हो चुका है और हमारी तरफ से ढेर सारी मस्ती और म्यूजिक हमने कराई है. And thank you so much guys for tuning in to Friday Mashup on Radio Masti. मैं हूँ गिनीशा, बिल्कुल आपसे इजाजत लेती हूँ ताकि अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं, I just want you all to dance with me. मैं भी इजाजत इसलिए मांग रही हूँ कि मैं भी स्टूडियो में नाचूंगी. आप ऐसा मत समझना कि आप अकेले नाचोगे. Of course, it's Friday, so we need to feel and share the good vibes. तो चलिए जी, ये म्यूजिक कभी स्टॉप नहीं होता है. हैव एन अमेजिंग फ्राइडे एंड अ रॉकिंग वीकेंड हमारे साथ. वैसे अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, ट्रैफिक स्लो हो सकता है, लेकिन हमारा म्यूजिक कभी स्लो नहीं होता है. सो कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन सिंगिंग और एंजॉय कीजिए बॉलीवुड के सुपरहिट गाने सिर्फ और सिर्फ आपके फ्राइडे मैशअप पर, ओनली ऑन रेडियो मस्त.

0: just about the music. It's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2. Radio Musty. In the mix.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion. House of ready-made garments.
3: टाइम बीटा चला जा रहे हैं और 5:40 हो चुके हैं. जस्ट लाइक यू नो एवरी आफ्टरनून वी डू कम अपने फैशन मंत्रा को लेकर आप लोगों के लिए. और आज के लिए आई गॉट सम फैशन टिप्स फॉर द वीकेंड, इवन फॉर जेंट्स एंड लेडीज के लिए. सो लेडीज, वीकेंड के लिए फ्लोरल ड्रेसेस जो है या कोट सेट पहनो, स्नीकर्स के साथ लुक होगा सुपर कूल. या जेंट्स पोलो टी शर्ट जो है, जीन्स और वाइट स्नीकर्स जो होते हैं, सिंपल स्मार्ट और ऑलवेज इन स्टाइल आप अगर लगना चाहोगे सो यू कैन जस्ट फॉलो दैट. तो चलिए जी, अगर आप चाहे तो आप कूल भी लग सकते हैं जस्ट बाय वेयरिंग सिंपल थिंग्स. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फॉलो अस एवरी आफ्टरनून ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर फैशन टिप्स.
2: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती फ्राइडे 7 अगस्त. और फिलहाल के लिए चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2. Radio Musti.
1: Radio Musti.
6: नमस्कार. शुक्रवार 7 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं. साइकिलिंग में टू द फ्रांस फार्म के छठे चरण में मॉशस की किम्बर्ली लोकोपियन ने शानदार जीत दर्ज की है. ये ग्रैंड बुकल में उनकी दूसरी जीत है. कठिन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए रोमांचक स्प्रिंट में जीत हासिल की. विपक्ष नेता बनने के अगले दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राज्यसभा में जनता की आवाज बनेंगे. संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने अपने प्राथमिक मुद्दे तय कर लिए हैं. ये एक बेहद दुर्लभ घटना है. लुबुशों के तट पर 3 दिनों में ब्लेनविल्स बीक्ड वेल्स के एक नर, उसके बच्चे और फिर उसकी मां की लाशें मिली. विशेषज्ञ इसे इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना मान रहे हैं. पोटली के सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता बाजार के आसपास मौजूद सड़क विक्रेताओं के खिलाफ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह अवैध प्रतिस्पर्धा उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है. इस पर नगर पालिका ने पुलिस गश्त और नियंत्रण सख्त करने का फैसला किया है. और विदेश में अमेरिका के न्यू मेक्सिको में मेटा पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के मामले में $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. ये इस मामले में कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है. पेशाब समाचार विस्तार से. साइकिलिंग में टू द फ्रांस फार्म और हमारी देशवासी किम्बर्ली लोकोपियनो के नाम एक और जीत दर्ज हो गई है. उन्होंने कल 2026 के संस्करण के छठे चरण में जीत हासिल की, जो ग्रैंड बुकल में उनकी दूसरी जीत है. तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद किम्बर्ली ने एक शानदार स्प्रिंट के अंत में जीत हासिल करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ताकतों का बखूबी इस्तेमाल किया. विकास बागेहत्सी, गीता सुनारान.
7: खुशी का ठिकाना नहीं है और इसकी वजह भी खास है.

0: किम्बर्ली लुकू पेनो ने महिला साइकिलिंग की दुनिया की दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है, खासकर लोहेना वेब्स को, जिन्हें बड़े स्प्रिंट मुकाबले में लगभग अजेय माना जाता था। इस शानदार जीत के बाद उनका पहला संदेश मॉरिशस में मौजूद अपने सभी समर्थकों और खासकर मौके पर मौजूद प्रशंसकों के लिए था। अनुनो के नारों से माहौल गूंज उठा। मॉरिशस के समर्थकों ने किम्बर्ली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जोरदार जश्न मनाया। कल शाम छठे चरण की फिनिश लाइन पर ये यादगार दृश्य देखने को मिला।
1: Deline Maurice qui lance, ça y est, Kim Lecourt qui lance le sprint et Célia Géry qui est en position idéale. Attention à Puck Peeters, Puck Peeters qui fait l'extérieur.
2: Ah ouais,
1: la néerlandaise, Puck Peeters en première position.
2: Elle a pas les jambes, Géry.
1: Mais attention, Puck Peeters qui est toujours devant, Puck Peeters, Kim Lecourt. Cédric Carvalho et la victoire de Kim Lecourt ici à Tournon-sur-Rhône.
0: Ye uplabdhi Kimberley Lecourt Pienaar ke liye kisi bade karname se kam nahi. टूर डे फ्लांद्र के दौरान कलाई में फ्रैक्चर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका ये सीजन शायद कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन लियेज बास्टोन लियेज 2025 की विजेता ने हार नहीं मानी और जीत हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। उनका कहना है कि किसी चरण में जीत हासिल करने का आनंद सामान्य क्लासिफिकेशन में अच्छा स्थान पाने से भी कहीं ज्यादा खास होता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम के शानदार सहयोग को भी दिया। ये प्रदर्शन उनके अब तक फीके रहे सीजन में नई चमक लेकर आया है। तीस साल की उम्र में किम्बर्ली लुकू पेनो ने टूर डी फ्रांस महिला वर्ग में अपने करियर की दूसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे विश्व साइकिलिंग की पहली खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं।
3: पोर्टली की ओर रुख करते हैं। सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार के आसपास स्ट्रीट विक्रेता मौजूद हैं। उनका मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा, जिसे वे अवैध मानते हैं, सीधे तौर पर उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। नगर पालिका द्वारा पुलिस गश्त और नियंत्रण को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। दासापाला सोमी किता सुनारान।
0: ये तस्वीरें बुधवार की हैं। पोर्टलिस के सेंट्रल मार्केट के सब्जी वालों ने बाजार के आसपास सड़क किनारे कारोबार करने वाले फेरी वालों की मौजूदगी के खिलाफ विरोध किया था। उनका ये भी कहना है कि ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। वे कहते हैं कि फेरी वाले कानून के दायरे से बाहर कारोबार कर रहे हैं और खासकर 500 मीटर की निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। इस शुक्रवार को दिन के 12 बजे बाजार के आसपास की सड़कें पहले की तुलना में कम व्यस्त दिखाई दीं। कुछ फेरी वाले अभी भी मौजूद थे। हमारी कैमरा की टीम को देखते ही कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने स्थान खाली करने को कहा। लॉर्ड मेयर क्रिस्टेल पोंडो कहती हैं, लेकिन ये सवाल अब भी है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। नगर पालिका का कहना है कि फेरी वाले विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में पूरी तरह कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं।
4: Nous avons beaucoup d'étals qui libre plus de 200. Le loyer à la Ben Victoria est 4 000 roupies mensuellement. À n'importe quel moment, nous sommes dans la municipalité, nous demandons une place, nous donnons autre. Et aussi, il y a une place qui est aménagée à la gare du Nord. Et là aussi, la majorité de l'étal est vide. C'est une place qui nous mettait.

0: qui à la disposition qui nous pas fait faire payer je gagne courant je paye je portable.
1: अब ये देखना होगा कि क्या ये कदम कई वर्षों से व्यापारियों और फेरी वालों के बीच चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान निकाल पाएंगे या नहीं।
2: विपक्ष नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज बनकर काम करेंगे। हालांकि उनका कार्यभार संभालना संसदीय अवकाश के दौरान हुआ है, फिर भी नए विपक्षी नेता ने पहले से ही कुछ प्राथमिक मुद्दों को तय कर लिया है।
1: अपने नए दायित्व की जिम्मेदारी संभालते ही चेतन बाबूलाल ने इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे ताकि वे सदन में जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठा सकें।
3: ब्यूरो लाली एंड ब्यूरो पूर ला पॉपुलेशन पूर नू कैपा वेये एस्की जेट पे विव बिएन एस्की जेट बान ड्रॉ पे बाफुए travail de leader de l'opposition, les poubisins, check and balances, le tout bon décision qu'ils ont prend, le tout bon mesure qu'ils ont peut prendre.
1: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड साउथ ईस्ट से निर्वाचित चेतन बाबूलाल का कहना है कि वे पूरी विनम्रता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
3: Beaucoup de dossiers qui prioritaires. Quand on get par exemple coup de la vie même, coup de la vie vient bien sûr qui ban mesure nous capable amener pour soulager la population. Quand nous get l'inflation, nous get des lots. Problème des lots, CIB, courant, électricité peut monter, puis aller même. Donc, nous avons beaucoup de dossiers, nous avons l'éducation.
1: 48 वर्षीय फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सांसद इस पद को संभालने वाले 17वें नेता हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
3: En consultation, et nous organisons nous-mêmes dans l'opposition. Nous avons un grand leader de l'opposition et camarade pour nous-mêmes, si un des plus grands leaders de l'opposition, donc à son côté, vous pensez. Exo aide, exo guidance, vous pensez, vous pourrez faire mon travail, comment vous allez faire?
1: अपना पहला पीएनक्यू पूछने से पहले नए विपक्ष के नेता संसदीय छुट्टियों का उपयोग पूरी तैयारी करने और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में करेंगे।
2: ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है जिसे विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना माना जा रहा है। लुबुशों के तट पर 3 दिनों के भीतर ब्लेनवेल्स बीक्ड वेल्स की 3 लाशें तट पर बहकर आईं। एक वयस्क नर, 1 साल के से कम उम्र का उसका बच्चा और फिर 2 दिन बाद उसकी माँ। इस परिवार की मौत की क्या वजह थी, चलिए जानते हैं अंजुराम गुलाम की इस रिपोर्ट में। विवरण अशिता रखू का है।
4: मंगलवार को पहली खबरें सामने आई। एक वयस्क नर वेल यानी पिता और उसका बैलिनो बच्चा समुद्र तट पर लुबुशों में मृत पाए गए।
5: पापा ए पिची बालन, बेबी बालन, दी ट्रो विल्नेराब।
4: पिता और बच्चा वेल बहुत कमजोर होते हैं। यदि शॉक या अन्य खतरनाक जल जंतुओं से वे टकरा जाते हैं। वे घबरा गए थे और ये गहरे समुद्र में रहने वाले होते हैं और यदि ये हमारे लगून में पहुंचे हैं तो 80 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर गहरा है, मतलब ये राह से भटक गए होंगे और बाहर नहीं निकल पाए थे। ये बहुत ही मिलनसार और सामाजिक स्वभाव वाले जानवर हैं। शायद माता वेल आसपास ही हैं क्योंकि वह अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद गुरुवार को उसी इलाके में एक तीसरा शव भी मिला। विशेषज्ञों के अनुसार ये बहुत संभवतः वयस्क मादा वेल यानी माँ का शव है। उसका शरीर काफी सड़ गल चुका था जिसे मौशिकुज में दफनाया गया है। पिता वेल और उसके बच्चे के शवों को लावानी नेचर पार्क की शव ग्रह में ले जाया गया। भावनाओं से परे ये खोज वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रिफिथ के संपर्क में आए वेल विशेषज्ञ पोलैंड के विशेषज्ञ वोजटेक बशा के अनुसार अब तक 550 ब्लेनविल बीक वाले वेल तट पर आकर फंसने के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी मामला पूरे परिवार से जुड़ा नहीं था, इसलिए ये दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है। विशेषज्ञ अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन जानवरों को किन परिस्थितियों में किनारे तक आना पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मौत का कारण क्या हो सकता है।
6: Peu probable que c'est une maladie. On aurait pu comprendre ça si c'était un

0: सर,
1: यदि तीन ऐसे जानवर साथ मरे हैं तो ये संभव नहीं है कि ये बीमारी से ग्रस्त हो, पर यदि एक होता है तो संभव है। बीक व्हेल 1000 मीटर की गहराई में तैरकर खाना ढूंढने के लिए प्रसिद्ध है। यदि कुछ उसे डराता है तो वह जल्द ही खाता है और वह घबराहट में मर भी सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यही हुआ होगा। स्वाभाविक कारण हो सकता है कि शौक मछलियों ने इन्हें गहराई में डराया होगा। जो ध्यान देने योग्य है वह ये है कि इस तरह के व्हेल को कुकी कैथर शौक भी कहते हैं। वे आते हैं और केवल व्हेल को काट कर चले जाते हैं, और इस प्रजाति के शौक हमेशा इस तरह के व्हेल मछलियों का शिकार करती हैं। अगर माँ व्हेल, पिता और बच्चा अपने आखिरी पलों में एक दूसरे से अलग हो गए थे तो हम ये कल्पना करना पसंद करेंगे कि अब वे फिर से एक साथ हैं और समुद्री जीवों के स्वर्ग में तैर रहे हैं।
2: वर्ष 2026-2027 के बजट में लुमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 साल की अवधि में 124 मिलियन रुपए प्रदान किए गए हैं। आगंतुकों के स्वागत के लिए त्रोशनी में कई संरचनाओं के निर्माण के साथ इसका पहला चरण शुरू होने की योजना है। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होने वाले ये काम लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री माहिन गुंदिया और सभी संबंधित साझेदारों ने स्थल का दौरा किया। सिंचा मुत्तु, गीता सुनारान।
3: लोगों के स्वागत के लिए एक प्रशासनिक कार्यालय, एक कियोस्क, हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए एक दुकान और शौचालय। लुमोन पर्वत के नीचे स्थित थोशेनी स्थल के विकास की परियोजना अब आकार ले रही है। इमारतों की वास्तुकला इस तरह तैयार की गई है कि वे प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह मेल खाएं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी पर्यावरण के अनुरूप होगी। लुमोन हेरिटेज ट्रस्ट फंड की अध्यक्षा जाना बाबली कहती हैं, हर महीने 6,000 से 7,000 लोग यहाँ आते हैं। यहाँ प्रवेश करने का मार्ग बहुत खराब हो गया है, इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। इन झोपड़ियों की भी मरम्मत की जाएगी। ये एक विश्व विरासत स्थल है और ये परियोजना यूनेस्को को सुपुर्द की जाएगी, ये देखने के लिए कि ये मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जो लगभग 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंजिया कहते हैं, सरकार ने यहाँ 124 मिलियन रुपए लगाए हैं 3 वर्षों के लिए, ताकि इस जगह को पूरी तरह से बेहतर किया जा सके। यूनेस्को की मांगों को पूरा करते हुए ऐसा किया जाएगा। सांसद गाविन जगन्नाथ कहते हैं, मुझे खुशी है, दक्षिणी इलाके के लिए ये एक अमूल्य स्थल है। इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी। दिसंबर 2027 से इसे फिर से खोलने की उम्मीद है। इस परियोजना में एक नए पार्किंग स्थल का निर्माण भी शामिल है। साथ ही इस जगह को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी पूरी तरह सुलभ बनाया जाएगा।
2: एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। ड्रग्स तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। होशिबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। सहाउनो अशिता रघु।
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के नेता ने नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल पर हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फाइनेंस बिल में कहा गया है कि यदि एक गाड़ी का बीमा 2 मिलियन रुपए से अधिक है तो इंश्योरर को एमओआर को इसके बारे में सूचित करना होगा। यही कदम बिजली उपभोग पर भी लागू है। यदि एक व्यक्ति 8,000 से 9,000 रुपए पार करता है, यानी वर्ष का लगभग 1,00,000 रुपए, सीबी को जांच के वास्ते एमओआर को सूचित करना होगा। सीडब्ल्यूए के लिए भी ये लागू होता है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें विदेशी मुद्रा की कमी, देश की आयात पर अत्यधिक निर्भरता और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या शामिल थी। रिफॉर्म पार्टी ने ये भी मांग की है कि वेरोनिक लुगोविन अपनी सांसद पद से इस्तीफा दें, जब तक कि गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी ने ये भी पुष्टि की है कि वह आगामी ग्राम परिषद चुनावों में हिस्सा लेगी।
2: न्यू मेक्सिको अमेरिका ने के एक न्यायाधीश ने मीटा को जनता को उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने के लिए $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। बाल सुरक्षा को लेकर कंपनी के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। थाईलैंड में एक किशोर लड़के द्वारा कथित तौर पर अपनी दादा दादी और स्कूल के शिक्षकों को गोली मारने के बाद कम से कम 8 लोगों की मौत

0: हो गई हैं और 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। विस्तार सुमेरा अकबर अली के साथ।
1: थाईलैंड में बैंकॉक के पास स्थित स्कूल में ही गोलियां चलाई गई हैं। 8 मौतों की पुष्टि की गई, जिनमें 5 अध्यापक शामिल रहे। अधिकारियों के मुताबिक 14 साल का संदिग्ध हमलावर भी जान से गया है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला पहले से अच्छी तरह योजित था और इसके साफ कदम और साफ लक्ष्य थे। एक छात्र ने बताया कि उसने एक अध्यापक को गोली लगते देखा, जबकि दूसरी छात्रा ने कहा कि वो और उसके दोस्त जान बचाने के लिए स्कूल की दीवार पार करके भाग गए। अधिकारियों ने लोगों से डेप्सिरिन स्कूल के पास वाले इलाके से दूर रहने की अपील की। ये इस साल थाईलैंड में दूसरे स्कूल में गोलीबारी की घटना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस हादसे के चलते नया फायर आर्म्स कंट्रोल लॉ लाने का वादा किया। प्रस्तावित कानून के तहत आम लोगों के बंदूक लेकर चलने पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालांकि उन्होंने अभी इस कानून के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नए नियम बंदूक की मालिकियत यानी गन ओनरशिप के नियमों को और सख्त बनाएंगे या नहीं।
0: और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल अर्शिता रघु के साथ।
2: आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कल सुबह भी बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी। विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश होगी पूर्व और ऊंचाई वाले इलाकों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:54 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:36 पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। राय रोड बिल विधेयक में 32 साल के 32 years old के जनाब अली अजहर मुईदीन, जो अजहर नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात पौने नौ बजे उनकी माँ बीबी अमीना मुईदीन के घर राय रोड बिल विधेयक से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बिल विधेयक की अलहे बैत मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए बोबालाल माटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:45। रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिविया सेश में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंदुमती भवन, पैदाइशी नाम बीदेसी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्मदेव भवन के घर रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिविया सेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री पुबाला सुंदरन अनासाला पातेया, जो बाला बिल पातेया नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन से उठाकर पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रारोड और सिनाल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उषा जुगिया, पैदाइशी नाम इसेरिया और जो नानी गातू नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल सुबह 10 बजे उनके बेटे वीरू जुगिया के घर रारोड और सिनाल से उठाकर

मौसम की शमशान भूमि दी जाए जाएगी क्रमिशन टुमारो एट 10 AM। SSO रोड मोस्टल मॉक सैत औंद्रे में 66 साल के 66 years old के श्री सुरेश नंदलाल चुनी जो कंट्रोलर TBS नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके घर SSO रोड मोस्टल मॉक सैत औंद्रे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाए जाएगी क्रमिशन।

0: कमल गाइस, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती। ये सारे चेतो बज चुके हैं, सो आप सभी लोगों का स्वागत है इन द थर्ड आवर ऑफ योर फ्राइडे मैशअप। एंड यस, इट्स मी गणेश ऑन द माइक साथ देने के लिए 7 बजे तक। मौसम काफी खराब है, बरसाती मौसम है। टू ऑल दोस हू आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली। और ये रहा अगला गाना खासकर आपके नाम।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: यस यस, यहाँ पर जाम नहीं बल्कि हम जामिंग कर रहे हैं और मैं और गिनीशा बैठ के बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्लान्स हम बना रहे हैं कि वीकेंड में क्या कुछ करना है और आपसे भी जानना है कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सैटरडे संडे जब आते हैं आपको प्लान बनाना पड़ता है या फिर अनएक्सपेक्टेड प्लान्स टर्न आउट टू बी द बेस्ट। कुछ लोग ये भी कहते हैं और हमें नहीं पता, आपको हमें बताना है कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड और आप क्या कुछ प्लान कर रहे हैं वीकेंड के लिए। यस यस, आज फ्राइडे इवनिंग है, टू गेट यू इन द मूड हम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक गाने आप लोगों के लिए, कुछ धमाकेदार कुछ मस्ती भरे गाने आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि बाकी दिनों की तरह फ्राइडे सबसे खूबसूरत इवनिंग होता है। ऑफ कोर्स यू हैव अ रीजन टू स्माइल टू सेलिब्रेट, और वैसे भी अगर आप जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई। एंड यू डोंट नीड टू वेट फॉर फ्राइडे टू सेलिब्रेट योर लाइफ, ये हर दिन आप कर सकते हैं। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप के पास एक वजह हो, एंड वजह कभी कभी आप खुद बन जाए वो खूबसूरत वजह होती है। सो चलिए, 7:07 हो चुके हैं, दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जाम अभी से लेकर टिल 9 PM, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। डू लेट अस नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑन 5499-1294।
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
3: गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिगिना गिग

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: बट अगर आपको पता है कि आप लोग ड्राइव करने वाले हैं सो प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आपको पता है आपको क्या करना है. चलिए अभी के लिए इट्स टाइम कि हम बढ़े आपके कुछ मैसेजेस की ओर. आशीष का प्यार भरा नमस्कार. दिव्या जी आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. थैंक यू सो मच. हाँ मुझे पता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि फ्राइडे के आते आते आपको इतनी थकान हो जाती है कि पार्टी करने का मूड भी नहीं होता है और आप घर जाके रिलैक्स करते हैं. लेकिन कुछ लोगों का एनर्जी लेवल ओ माई गॉड हाई से भी हाई रहता है. और चलिए ऐसा होना भी चाहिए. एंड आप कहते हैं कि एक धमाकेदार गाना बजा दीजिए हम सब के लिए ओपन यूनिवर्सिटी ड्राइवर्स एडमिशन सेक्शन एग्जाम सेक्शन के लिए. थैंक यू सो मच आशीष आपके इस प्यारे मैसेज के लिए. हेलो जी गुड इवनिंग कुकिंग एंड एंजॉयिंग द रेडियो मस्ती टीम. आज आपके यहाँ क्या बना है? यस आपने बनाया है पीमा कागी और आपने बनाया है गोगा या गर्मा

गरम पराठा और साथ में आपने ब्रिंजल भी बनाया है, क्या बात है क्या बात है सुया जी, लगता है आपके हाथ में जादू है। बार बार जब भी आपके मैसेजेस आते हैं आप किचन में ही रहते हैं और इसके लिए आपको बोको आज। सो सुया बिहारी जी आप कुंगुमा से कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डेफिनेटली आपके साइड में

0: जैम
1: OMG रेडियो मस्ती
0: एकदम वंडरफुल वाला गाना. मेरा नाम मैरी है, मैरी सौ तक टक का तेरी है. और चलिए, मेरा नाम मैरी नहीं लेकिन दिव्या है और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम भी सौ टक्का आपके ही है टिल 9 PM, जहां पर हमें मौका मिल रहा है कुछ खूबसूरत धमाकेदार गाने चलाने के लिए टू कीप यू इन द फ्राइडे नाइट वाइब्स. तो चलिए, यहां पर बहुत सारे आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं. साथ देने के लिए थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू वक्त निकाल कर हमें मैसेजेस भेजने के लिए. और यहां पर we have Rishi Bidesi connected with us. Thank you so much हमारा साथ देने के लिए. And we would definitely like to wish a very happy wedding anniversary to Mr. Vishnu and Mr. Saroj Apadu of Pomplemousses. 49 years of togetherness. My God, एक साल नहीं, दो साल नहीं, 15 साल नहीं, हम 49 years के बारे में बात कर रहे हैं. और next year आप अपने इस wedding का golden jubilee celebrate करने वाले हैं, 50 साल. My God. तो चलिए, अभी के लिए इस 49th wedding anniversary को enjoy कीजिए हमारी team के साथ. और RM2 team की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार and best wishes to this wonderful couple. जो है ऑल द वे फ्रॉम पॉपलेमूसेस और विशेज कमिंग फ्रॉम बेटे अश्विन, बेटा है रोमी और उनकी बेटी वनीशा की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार. और विदाउट फॉरगेटिंग आपकी प्यारी सी दोस्त है मिंता सजुअन ऑल द वे फ्रॉम फोजीसाक, जिनको लोग मामो शेरी के नाम से भी जानते हैं. एंड बहुत बहुत सारा प्यार आपको मिंता जी, एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड ऐसे ही आप लोग खुश रहिए. और आई गेस अपने नाम सुनकर तो जरूर थोड़ा बहुत आपने स्माइल किया ही होगा. और इसी स्माइल को बरकरार रखने के लिए वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली टू ऑल ऑफ यू एंड आप लोगों की दोस्ती के लिए भी चीयर अप. एंड साथ में ये अगला गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस वक्त शायद किचन में है, खाना बना रही है, या फिर आपका खाना हो गया है, आप बर्तन मांज रहे हैं. आंटी जी, गेट अप एंड डांस.
2: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: हाय क्या बात है, कभी मैरी आ रही है, कभी पिंकी आ रही है, बाद में शायद शीला मुन्नी भी आ सकती है, लेकिन जो एंड तक साथ निभाने वाली है वो है दिव्या। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। 7:50 टू ऑल दोज, मे बी आप इस वक्त काम पर होंगे, नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, आपको बोंको आज, एंड ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ एज यूजुअल, आपको बना पीछी। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइडे इवनिंग होते हैं पार्टी शार्टी करने के लिए, तो मे बी आप ऑलरेडी निकल चुके हैं ऑन योर वे टू पार्टी, या फिर आप अभी तैयार हो रहे होंगे। सो चलिए, हैव अ ग्रेट ग्रेट वंडरफुल टाइम, हैव अ ब्लास्ट, और आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छे से इस फ्राइडे इवनिंग को सेलिब्रेट करेंगे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप पार्टी करने वाले हैं, सो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से आप गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़िए और आराम से घर वापस भी आइए।
1: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
2: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: क्या बात है, क्या बात है। आजकल इन गानों के रिमेक भी बन रहे हैं। आई गेस 2027 के आते आते और भी गाने के रिमेक होते रहेंगे, लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि ओजी गाना हमेशा ओजी ही रहता है। और आई जस्ट होप कि आप इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर फ्राइडे इवनिंग। चलिए हम यहाँ पर जितना हो सके ओजी वाले मोमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर यू। 8:04 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग, 7 अगस्त ऑलरेडी, एंड आप लोग क्या कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और वहाँ का बाहर का जो सिनारियो है, हम अपने दिमाग में अपने तरीके से इमेजिन करना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हम स्टूडियो के अंदर हैं, ना ही हमें पता है कि मौसम कैसा है, ना ही हमें पता है कि कहाँ पर रुक रुक कर गाड़ियाँ चल रही हैं, मे बी आई डोंट नो, या फिर कहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। अगर आप लोग ड्राइव के लिए भी निकल चुके हैं तो कहाँ जा रहे हैं और कौन सा गाना आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। बट अगर आपको कोई सजेशन भी देना है गाने को लेकर, प्लीज़ मेक श्योर कोई रोमांटिक गाना नहीं होना चाहिए। आज फ्राइडे है गाइस, सो चलिए थोड़ा फ्राइडे मूड में आपको लेके आना है। सो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि बस टेम्पो को हाई रखे और आपकी एनर्जी को भी। वेल, यहाँ पर आपके कुछ मैसेजेस पहुँच रहे हैं हम तक, थैंक यू सो मच एक बार फिर से दिव्या का साथ देने के लिए। ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM एंड वी हैव अंतिश कनेक्टेड विद अस ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हे अंतिश, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर मैसेज एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज कि आप वक्त निकाल कर हमें याद करते हैं। भले ही आप मॉरिशस से बहुत ही दूर है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इन गानों को सुनने के बाद यू रियली फील होम। सो चलिए अंतिश, द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर स्वीट फैमिली।
1: फिल्मी जाम, RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती.
0: Well, that was Neha for you and Le Ja Dil Mera Le Meri Jana. ये गाना एकदम मेरे लिए टोंग ट्विस्टर है भाई. फ्राइडे में किसको टाइम मिलता है ये टोंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस करने के लिए और इतना डिफिकल्ट गाना गाने के लिए. हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, क्योंकि भाई ये जिंदगी है. कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना होता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. सो कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड. एंड चलिए, इट्स अ फ्राइडे इवनिंग. इतनी लेक्चर तो नहीं देना है आपको, बट आई जस्ट होप कि यू आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद रेडियो मस्ती एंड फुल ऑन वॉल्यूम के साथ. बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ. वी ऑल्सो हैव यहाँ पर हमारी प्यारी सी टीना जी. हाई नमस्ते, गुड इवनिंग दिव्या. गुड इवनिंग आपको टीना जी. वेलकम ऑन बोर्ड ऑफ रेडियो मस्ती ऑन हाई वॉल्यूम. एंजॉयिंग योर धमाकेदार प्ले लिस्ट. फ्राइडे इज फन डे, बिल्कुल, नो डाउट. हैविंग डिनर विद फैमिली. नेक्स्ट रा गोज आउट टू माई लव्ड वंस इंक्लूडिंग योर स्वीट हैप्पी फैमिली. जस्ट टेक केयर एंड स्टे सेफ. आपको भी टीना जी, थैंक यू सो मच. एंड आपने गाना मांगा है हे ब्रो वाला, डीजे मेरा गाना चला दो. वाह, क्या गाना चुना है आपने, मेरा गाना बजा दे. ये गाना तो बिल्कुल हम आपके लिए डेडिकेट करेंगे. इसलिए तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई गाना है जिसके बारे में आपको हमें बताना है, तो बिल्कुल इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. बट नॉट टू फॉरगेट, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट वाला शो. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हमें याद नहीं रहता है और आपको याद हो जाता है जब आपके मैसेजेस आते हैं. तो हमें भी ऐसा लगता है कि ओ हो, ये गाना तो लॉन्ग टाइम नहीं चला है, जैसे कि ये वाला गाना जो आपने हमें बताया. तो चलिए, ये गाना आपके लिए हम बजाएंगे, टीना जी, हमारी प्यारी सी कमला जी के लिए भी, एंड ऑल्सो टू ऑल योर स्वीट फैमिली. फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: क्या बात है, बीट पे ठुमका आपको भी लगाना है। और कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे गाने चल जाते हैं जिनको सुनने के बाद हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम तो चाहते हैं ही कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हमारे गाने पर आप थोड़े ठुमके शुमके लगाएं और पैर को थिरकाने लग जाए। पर देखिए, आज फ्राइडे है, बहाने मिल रहे हैं डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सो व्हाई नॉट।

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल डेफिनेटली हम जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टॉप रॉकिंग एंड रोलिंग, यू शुड कीप गोइंग। चलिए 8:55 हो चुके हैं और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर योर सैटरडे आफ्टरनून 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई मैं हूं वेदिता, आ गई हूं लेकर आपके लिए आप ही का अपना लेट नाइट ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो मस्ती पर। तो भाई रात जवां है और आपका मूड भी काफी मस्त होगा, तो चलिए इसी के साथ मैं और आप साथ में मिलकर रेडियो मस्ती पर करते हैं थोड़ा हंगामा। अपना रेडियो सेट का जो वॉल्यूम है उसको हाई रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं धमाके।

आपकी एनर्जी बूस्टर। जी हाँ, ये है हमारा रेडियो मस्ती। फ्राइडे नाइट में मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आम शो।

अगर आप इस समय ड्राइव कर रहे हैं या तो फिर नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। रात को सोना नहीं है तो हम जगा के रखेंगे आपको।

मजा तो आ रहा है हमें, आपको भी आ रहा होगा। जब ऐसे गाने चलते हैं तो इंसान बैठे कैसे। अरे भाई मैं तो कहती हूँ जगह बना दो डांस करने के लिए। अभी क्या है ना कि कोई आसपास है नहीं, हम हैं, आप हैं और कोई नहीं है, तो ऐसा करते हैं म्यूजिक का डोज जारी।

कर रही हूँ कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि आपका मूड ठीक हो गया होगा। वैसे कभी कभी होता है ना कि फ्राइडे की जो थकान होती है एकदम हमारा मूड बिगाड़ देती है, तो उसी मूड को हम टकाटक बनाने के लिए आए हैं आपके

बात है, कोई ऐसा गाना जो मूड बदल दे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही गाने लेकर आए हम आपके लिए, बैक टू बैक पेपी सॉन्ग्स आपके लिए रिमिक्सेस लेकर आए हैं रेडियो मस्ती पर, और मैं हूँ विनीता, साथ दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।

started.

बात कहूँ आपको, ये जो फ्राइडे इवनिंग होती है ना, इससे पता चल जाता है कि भाई इंसान का दिमाग रिलैक्स्ड हो गया है, क्योंकि वीकेंड का जो मैजिक है वो सर पे चढ़ के बोलने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप

वीकडेज हो या वीकेंड हो, हम हर तरह से आपको एंटरटेन करते हैं रेडियो मस्ती पर। बस फर्क इतना है कि मॉर्निंग में थोड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन फ्राइडे इवनिंग होते ही हमारा जो शोर है वो यहाँ भी शुरू हो जाता है। अब सोने को किसने कहा है, हम तो अभी पूरी रात जागने वाले हैं इन गीतों

हमें सुन रहे हैं हेलो गुड इवनिंग एंड नमस्कार, मैं हूं वेदिता और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, जहां पर होती है मस्ती हर रोज, या डेफिनेटली एवरी डे। तो आज की जो मस्ती है कुछ अलग है, क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है। उम्मीद करती हूं कि आप

दोस्तों इस समय हो सकता है घर में पार्टी चल रही होगी, हो सकता है आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हो सकता है कि इस समय आप अपने फ्रेंड्स से बस मिलकर कुछ बातें कर रहे होंगे या तो फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले होंगे। साथ देते रहिएगा, मैं हूँ वेदिता, आई प्रॉमिस यू ये सफर सुहाना जरूर बनेगा।

जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कंपनी आपको जरूर अच्छी लग रही हो, यानी कि रेडियो मस्ती के गाने, रेडियो मस्ती जो हमेशा आपके साथ

तो चलिए भाई अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं आपके अपने रेडियो मस्ती पर, और यहाँ पर लेट नाइट ग्रूव्स में ग्रूव करने के लिए कुछ ऐसे गाने जो आपकी होश उड़ा दे।

यहाँ पर हमारे म्यूजिक के साथ आपको पार्टी वाली वाइब्स तो आ ही रही होगी, तो चलिए आप भी हमारे इस पार्टी वाली नाइट में शामिल हो जाइए और हमारे गीतों के साथ वाइब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये है आपका लेट नाइट।

रात जितनी शांत होती है ना, म्यूजिक उतना ही पावरफुल होने लगता है। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ चलिए कुछ और धमाकेदार ट्रैक सुनते हैं आपके अपने रेडियो मस्ती पर वेदिता के साथ।

हाय, मैं क्या बताऊं आपको, हमारा मूड तो एकदम यहाँ पर आने से पहले चेंज था। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये पार्टी जारी हो और खत्म ही ना हो, पर क्या करें, अभी पार्टी को खत्म करना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज विदिता सिंह, बाय बाय टू यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहे। आपके अपने लेट नाइट ग्रुप में फिर मिलूंगी कल।